0: Together. My name is Issa Ahmed Mola, and you are tuned into Inspire FM 105.1. Allahumma
1: salli. Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
4: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazib and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Listen, if exam stress is making your head spin, take a breath. It's completely normal to feel anxious or scared right now. You aren't alone and a grade doesn't define who you are. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
2: Inspire FM on 105.1 FM. Inspire FM.
7: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
9: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
10: Suleiman Rafiq,
11: Leo Nizal,
12: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
11: Tune in on 105.1 FM.
12: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
9: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
14: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
15: हाय
10: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
14: ताकि ना वो ट्रिगर थम नहीं होता, वो जो सारी चीज़ें टेंट नाइट सारी चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं. साथ बंदा एक्सरसाइज ही कर ले हाथ की. नहीं जी, उन्होंने कहा नहीं, हम पंखा लगा लेंगे.
15: लेकिन वाकई हमें अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए हर इन चीजों पे. लाइक वी शुड बी सो ग्रेटफुल.
14: शो ने हेल्प की साथ जो करनी चाहिए उसको
15: बहुत ज्यादा. अजाद अल्लाह, मैंने आपकी जैसे पिछले शोज आपके जो अभी गुजरे हैं उन उन उनको सुनना शुरू किया. वो
14: कैसे थे? बहुत अच्छे शो थे. पिछले दो बहुत ही अच्छे थे.
15: हाँ जी बिल्कुल, उनमें से एक मैंने सुना है, अभी दूसरा रहता है मेरा. तो
14: वो सुना आपने जिसमें कहा है, जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं. और आपने कहा जो कुछ पूछेंगे मैं वो सब बताऊंगा, और उसका रास्ता भी बताऊंगा, प्लान भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा. लेकिन पूछेंगे आप, बजाय इसके कि सिर्फ हमें कहते रहे कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपने ये पा लिया, वो पा लिया, कैसे पाया, क्यों पाया, क्या हुआ, वो पूछें, रास्ता कौन सा है, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछें, तो उसका जवाब आएगा.
15: अज़ादला, आज मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि नाउ इट्स द टाइम टू लेट इट गो. जैसे हमने चीजें पकड़ी होती हैं, बस छोड़ते नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बस अब जाने दो. वो हमें कैसे पता चलेगा कि नाउ इट्स द राइट टाइम.
14: जब हर्ट करने लगे, जब दर्द जो है वो काबू से बाहर होने लगे, जब वक्त जो है वो आपको लगे कि यू आर होल्डिंग इट फॉर टू लॉन्ग और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप वैसे ही क्लिंग ऑन करके किसी चीज़ के साथ बैठ गए हैं, और आप बजाय इसके कि उस डर को प्रोसेस करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको लेट गो करें, क्योंकि अब आप ज़िंदगी के उस डेकेड में या उस जगह या उस पोजिशन में नहीं हैं. तो अगर कोई चीज़ आपने बचपन से पकड़ी हुई है, तो वो बचपन के स्कार्स और तकलीफ़ें सीखने के लिए थी. उस वक्त आपके इख्तियार में चीज़ें नहीं थी, उस वक्त वो आपके लिए अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थी. अब कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं. इस बात को आपको लगता है कि हम कहीं से भी रब के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे कि जी मेरे साथ बचपन में यह हुआ था, या मेरे साथ जवानी में यह हुआ था, या मेरे साथ धोखा हो गया. वो आगे से जवाब है. तो क्या, किसने कहा था कि ज़िंदगी आपको दूंगा तो पार्टी चल रही होगी वहाँ पर? उसमें तो स्ट्रगल्स हैं, उसमें तो टूल्स दिए थे, एक यू नो एक एनवायरमेंट दिया था, उसके अंदर आपने कुछ चीज़ों में ऑपरेट करना था, कुछ थोड़े से अरसे के लिए, एक वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपने कुछ चीज़ें करनी थी. क्या हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे हो गया, वैसे हो गया. फिर किया क्या, वो जो टैलेंट दिया था, ये जो मकसद दिया था, ये जो रास्ते में लोग मिले थे, ये जिसने सपोर्ट की थी, इनको वापसी में क्या दिया आपने, इनको क्या मिला आपसे, दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ, आपके माँ बाप को क्या मिला, आपके दोस्तों को क्या मिला, आपने बनाया क्या, दिया क्या दुनिया को, अपने बाद क्या दुनिया आप छोड़ के आए हैं. तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने साथ इंटरनल डायलॉग करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में दुनिया में कई चीज़ें जो हमने पकड़ के रखी हैं, वो खुदा के साथ लड़ाई है हमारी. और लड़ाई कैसे है, क्योंकि एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ है, उसको हमने डिसरप्ट किया हुआ है. हम वक्त के साथ चीज़ें सीख कर आगे बढ़ने के बजाय, हम जो नेचुरल फ्लो का मतलब है, कोई फौत हो जाता है आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं. तो क्या नेचुरल नहीं है लोगों का मर जाना? आप रब को मानते हैं लेकिन उसके नेचुरल प्रोसेस को नहीं मानते, आप तो उसके खिलाफ ही खड़े हैं ना. कोई चीज़ आपको मिली थी, वो ले ली गई है, तो क्या आप साथ लेके आए थे उसको? यहीं दुनिया में मिली थी, उसी ने दिलाई थी, उसी ने लिए, आगे कुछ और पड़ा हुआ होगा आपके लिए. आप कोशिश तो करें, आगे तो निकलें आप. तो जब आपको मकसद की ज़िंदगी की समझ आई थी, आ जाएगी, जब आपको खुद का पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, जब आपको रब का पता चल जाएगा वो कौन है, वो क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, ये कहीं अलाइन भी हो रहे हैं आपस में दोनों के, नहीं, हम नमाज़ें भी पढ़े जा रहे हैं लेकिन दुखी हैं, लंबे हमारे मुँह हैं, हम खामखा परेशान दुखी. और कहा गया, क्लियर कट कहा गया, मोमिन को कभी हुज़्न व मलाल नहीं होता, यानी वो हर वक्त का दुखी और वो यू नो मलाल पीछे की कहानी को याद करके, काश मैंने ये ना किया होता, वो ना किया होता, हो गया, गुजर गया, आगे क्या है, क्योंकि उसने यहाँ परमानेंट नहीं रहना है. यहाँ अगर देखें, अगर मुझको कोई 50,000 साल भी रहना होता तो चलो फिर भी तुक बनती थी कि चलो जी ये हो गया, वो हो गया, आगे कैसे चलूँगा. टाइम ही 50, 60, 70 साल है, किसी के पास इससे भी कम है. तो इसके बीच में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया। बचपन में माँ बाप मिले तो मसला, नहीं मिले तो मसला, बच्चे हुए तो मसला, बच्चे नहीं हुए तो मसला, दोस्त मिले तो मसला, नहीं मिला तो मसला, मोहब्बत मिली तो मसला, नहीं मिला तो मसला, शादी हुई तो मसला, नहीं हुई तो मसला, तलाक हो गई तो मसला, नहीं हो रही है तो एक और मसला। इन मसाइल में आपको क्या लगता है कि जिस काम के लिए आप आए हैं वो मजाक कर रहे हैं हम उसके साथ, और सैकड़ों सालों से यही ड्रामा चल रहा है, सास भी कभी बहू थी से बाहर निकलें, और यू नो हमने ज़िंदगी की माँ बहन और बाप भाई करके रख दिया है, अपना भी हमने ये कर दिया, दुनिया के साथ भी हमने ये कर दिया है, मकसद के साथ हमने ये कर दिया है, तो कब तक चीज़ों के साथ लटके रहेंगे, कब तक किसी और से पैसे लेके खाते रहेंगे बेगैरतों की तरह, कब तक किसी और की एनर्जी से एनर्जी लेके ज़िंदा रहेंगे बेशर्मों की तरह, कब तक? हमने वापस भी तो कुछ करना है किसी को। जो आदमी आपकी बात सुनता है सारे दुख लेके परेशानियाँ उस पर चढ़ जाते हैं और उसी से सब कुछ मांगने शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि उसको तो कुछ कहना ही नहीं है जिससे आपको एनर्जी मिल रही है। मेरी ज़िंदगी के कुछ 4-5 रॉक्स हैं पिछले 25-30-40 सालों से, हराम हो उन्होंने मेरे लिए जो एक वक्त में कर दिया, इट्स मोर देन एनफ। सारी ज़िंदगी मैं उनको ब्लेसिंग के तौर पर लेता हूँ, कभी तकलीफ परेशानी उनको नहीं बताता, अगर शेयर कर ली, बात कर ली, लेकिन उससे का कोई मकसद नहीं होता कि उनसे कुछ लेना है या उनसे मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, नहीं, वो हैं, यही बहुत बड़ी सपोर्ट है। वो मुझे जानते हैं, बहुत बड़ी सपोर्ट है। मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, बहुत बड़ी सपोर्ट है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उनको इससे परवाह नहीं, बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो बिल्कुल इसी तरह आपको भी समझ आ जाना चाहिए, बचपन की चीज़ें बचपन में अच्छी लगती, जवानी की चीज़ें जवानी में करें, मिडिल एज की चीज़ें मिडिल एज में हैंडल करें। अब आहिस्ता आहिस्ता हम मेच्योर हो रहे हैं और बुढ़ापे में जाके जितना हमारा बचपना है, जितनी हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं। हम इतने बुरे और नीच सोचों वाले और इमोशनल और नीडी बूढ़े और बूढ़ियाँ होते हैं कि हमसे बच्चे मिलना ही नहीं चाहते, और इस चक्कर में हम उनको दूर कर देते हैं और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो सोचें समझें, सोचने समझने से आप क्या बनेंगे? एसेट बनेंगे। नेचर के साइकिल को एक्सेप्ट करने से आप क्या बनेंगे? एसेट बनेंगे। अपनी चीज़ों को खुद हैंडल करने से आप क्या बनेंगे? एसेट बनेंगे। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है इस दुनिया में कि एसेट छोड़ दे। नोबडी लीव्स एन एसेट। एवरीबडी वॉन्ट्स टू ओन द एसेट, दे जस्ट डोंट वॉन्ट द लाइबिलिटीज। देन डोंट बी अ लाइबिलिटी। ज़िंदगी में आप लाइबिलिटी बनने के लिए आए हैं, जानबूझकर तो आप कोई भी नहीं लाइबिलिटी बनेगा ना, लेकिन हम जानबूझकर कंपनी अपनी ज़ात को बैंकरप्ट करा देते हैं, खुद लाइबिलिटी बन जाते हैं। लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। दोस्ती तो बड़ी दूर की बात है, शादी तो बड़ी दूर की बात है, पार्टनरशिप तो बहुत ही दूर की बात है। हम में से कई लोग इस काबिल भी नहीं उनके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उसमें आपके दिमाग में गेमें चल रही हैं, दुनिया, लोग, हालात, लोगों पर टांग रखना, कोई सोशल एक्सेप्टेंस के लिए चीज़ बना लेना,

ऐसे लोगों को मैन चाइल्ड, मोरॉन्स, इम्बेसिल्स, एक्चुअल में हम ये हैं। और मैं तो बता चुका हूँ बहुत दफ़ा मर्दों और औरतों को कि ये जिनकी जो हरकत होती है, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, उसको उर्दू में ये कहते हैं, और इसको हम लोग गाली समझते हैं, लेकिन ये वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं हमारे अंदर के, जो जो भी इनर चाइल्ड जो अभी तक हील नहीं हो पाया, जो हम चीज़ों को समझ नहीं पाए, हमारी ग्रीड ही ख़त्म नहीं हो रही, हमारी लस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही। हम वो उतना जमा करना चाहते हैं जितना हमने इस्तेमाल नहीं करना। जो हमने कमा लिया है वो उससे हमारी औलादें और लोग बर्बाद हो जाएंगे, बजाय इसके कि हम हर महीने काम करें, उससे आपका कुछ बने और हर साल थोड़ी थोड़ी तरक्की हो, बजाय इसके कि इतना हो जाए कि आप पागल हो जाएं और उस पैसे को और उस चीज़ को छुपाते छुपाते अपने घर में और अपने कंपनी में और अपनी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ शुरू कर दें। तो ये जब आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे तो इससे आपको सुकून आएगा। एक और बात जो यहाँ पर करना ज़रूरी है, देखें, जब आप बहुत नीडी होते हैं ना, या आप डेस्परेट हो जाते हैं, या आप किसी चीज़ की चाह में उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो मकसद हो, चाहे कोई फेम हो, कोई नेम हो, कोई भी चीज़ हो, तो फिर आपकी एक इंतहाई तकलीफ़ दे ज़िंदगी में आप पैर रख देते हैं, और ये एक विशियस साइकिल है, इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। और इससे आप क्या करते हैं, यू डिसरप्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। उसमें वक्त के ऊपर कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, कुछ पहले दूसरे डेकेड में मिलती हैं, कुछ तीसरे चौथे में मिलती हैं, कुछ कभी नहीं मिलती हैं। इन चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, नेचुरल साइकिल के अंदर ज़िंदगी चलती है। लोग आपसे मिलते हैं, अलहदा होते हैं, कुछ लोग थोड़े से वक्त के लिए साथ होते हैं, कुछ ज़्यादा वक्त के लिए, कुछ लंबे वक्त के लिए, कुछ लोग आपसे शुरू में, कुछ बाद में बिछड़ जाते हैं। ये एक नेचुरल फ्लो है चीज़ों का। कुछ चीज़ें आपके गिफ्ट से अलाइन ही नहीं करती, कुछ चीज़ों का आप में नेचुरल टैलेंट ही नहीं होता, कुछ चीज़ों का आपके लिए वो हिम्मत, वो ताकत, वो जेस्ट, वो रेजिलियंस ही नहीं होती कि आप वो हासिल करें। कई लोगों का वो प्रोफेशन ही नहीं होता, कई लोगों के लिए वो इंसान जिनके पीछे भाग रहे होते हैं वो इनके लिए नहीं होते, वो स्पेसिफिक रिश्ते के लिए नहीं होते, वो किसी और चीज़ के लिए होते हैं। उनके साथ हम ख़राब कर लेते हैं और उस वक्त को भी हम बर्बाद कर लेते हैं। तो जब आप डेस्परेट होने से बाहर निकलेंगे, नीडी होने से बाहर निकलेंगे, रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, इस फाइन बैलेंस को समझ जाएंगे कि व्हाट टू होल्ड ऑन टू, व्हाट टू लेट गो, इस बात को समझेंगे हाउ मच इज़ गुड इनफ, मुझे इस दुनिया में कितना रहना है, कितने साल रहना है, कितना पैसा, कितना नाम मुकाम मुझे चाहिए अपने बेसिक काम करने के लिए, और जो कुछ आपको मिला है उस पर ज़्यादा ध्यान होगा, दूसरों को क्या मिला है उस पर ध्यान देने से बाज आ जाएं, ताकि आप चीज़ों को बेहतर हैंडल कर सकें और ये प्रेशर आपको बॉदर ना करे। जब आप ये करेंगे तो आप क्या करेंगे, बदकिस्मती से इस स्टेज पर आके आप वो सोचना शुरू करेंगे या वो करना शुरू करेंगे जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। और ज़्यादातर बदबخت हम लोग 35-40 में हमें आके ये बात समझ आती है कि हमें सोच कर करने के लिए पैदा किया गया है। करने के लिए जानवर, हशरातुल अर्ज, रींगने वाले, उड़ने वाले जानवर, इन लोगों के लिए इनको सिर्फ करना है, इनको और कुछ नहीं आता, इनमें बेसिक इंटेलिजेंस है। हम में बहुत कुछ है, आर्टिकुलेशन की एबिलिटी से लेकर, इल्मुल बयान से लेकर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम दुनिया को मुसख़र कर रहे हैं। दुनिया हमारे ताबे है, सब कुछ हमारे अंडर है, हम कॉन्कर कर चुके हैं इस दुनिया को। तो जब हमें ये सोच कर करने से होता है, हम 40 साल तक क्या कर रहे होते हैं, वरींग से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, परेशानी आती है, डेस्परेशन आती है, नीडीनेस बढ़ती है, आपकी फीलिंग्स बार बार हर्ट हो जाती हैं। तो वरींग से आप अपने आप को रॉब कर लेते हैं, आपकी एनर्जी से, प्रोडक्टिव थाट से, क्लैरिटी ऑफ माइंड से, चीज़ों को देख नहीं सकते आप क्लियरली, क्योंकि आप वरी कर रहे हैं 30-35-40 साल तक। और थिंकिंग शुरू कर देनी चाहिए तो शुरू से ही, जिसमें आपको तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने हो जाते हैं। जब हम इतना अर्ज के साथ, इतनी पागलपन के साथ किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे, तो आपको इर्द गिर्द नज़र आना बंद हो जाता है। और कई दफ़ा जो चीज़ असल में आपके लिए, वो आप उस चीज़ की साइड पे पड़ी होती है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रिंजेस के ऊपर वो चीज़ें होती हैं, और विल आप टनल विजन में चल रहे होते हैं सिर्फ लॉन्गर रन में, तो वो आपको कभी नज़र नहीं आती। और रास्ते में कई लोग जो आपके साथ होने चाहिए थे, कई अपॉर्चुनिटीज़, कई इन्वायरमेंट्स जो आपके लिए थे जिसमें आप कमाल कर सकते थे, वो छोड़कर उन चीज़ों के पीछे, उन लोगों के पीछे, उस पावर या कुर्सी के पीछे आप भाग रहे होते हैं, जो आपके एंड में जब आपके हाथ आती है तो सब कुछ आप लूज़ कर चुके होते हैं, मेंटल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी, स्पिरिचुअल हेल्थ भी, रिश्ते भी, और बहुत सारी चीज़ें भी। तो इसको नज़र, ये समझना, ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, ये जिस बंदे को इतनी सी बात समझ आ गई, ज़िंदगी में उसको तकलीफ़ें, परेशानियाँ, फिर वो ढूंढा करेगा कि मुझे कोई तकलीफ़ मिले, कोई परेशानी मिले, कोई मसला मिले, मैं हल करूँ। फिर आपको ये जो हर चीज़ आपके दरवाजे पे कोई तकलीफ़, परेशानी, मसाइल डाल जाते हैं ना लोग, ये ख़त्म हो जाएगा।

0: आपका दुखना बंद हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा आपको, और फिर आपकी मर्जी है, पिक एंड चूज करें। आप इससे बेहतर अगर क्लिप कोई समझता है कि रिकॉर्ड करा लेगा तो वो नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपके सर है, सारे सेहरे आपके सर चले जाते हैं सजीला जी बार बार।
1: ये सब कुछ आप करते हैं,
0: ये हुआ क्या था? अब बताएं, ये जो क्या बताया है, क्या समझ आई?
1: आपने तो मसले का हल, मसले की जड़ ही आपने खत्म कर दी।
0: मैंने पता है ये क्या किया है
1: जी?
0: ये मैंने, एक बंदा था जो बड़ा वीक था, ठीक है, वो किसी से मोहब्बत करता था तो वो उस बंदी को कुछ बता नहीं सकता था कि मैं आपसे मोहब्बत फरमाता हूँ, अब हमारी शादी हो जाए, अब हमारे दो बच्चे हों जिनकी शक्ल मेरी तरह, अकल आपकी तरह, खुदा न खास्ता हो जाए, ठीक है, ये सब वो कह नहीं पाता था। तो उसका एक दोस्त था जो एक बहादुर किस्म के बेवकूफ़ दोस्त होते हैं ना, जो सिर्फ उंगली करना जानते हैं, वो आपको मरवाना चाहते हैं फंसाना चाहते हैं, तो वो आपको खाम खा की शह देते हैं और फिर आपसे वो कहते हैं जी आपने ऐसा करो, इस दफ़ा जाओ मर्द बनो और जाकर कह दो सब कुछ, ठीक है। तो वो बंदा फिर बड़ा तैयार श्यार होकर खुशबू वगैरह लगा के यू नो जाता है और वहाँ पर उस बंदी के सामने खड़ा होता है, वो उसने अपनी स्पीच पूरी तैयार की होती है, और ऑफ कोर्स जब आप इतने डेस्परेट होते हैं, घबराए हुए होते हैं, हार्मोन्स बम्बार्ड कर रहे होते हैं, आपकी बेसिक यू नो चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए आप इतना बड़ा ड्रामा करके यू नो घबराए हुए, अगला बंदा बेचारा आम सा इंसान है, वही हर वक्त घबराया घबराया रहता है, उसको लगता है मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरे में तो कोई खास बात है नहीं, लेकिन अब आपके दिमाग में घवा बना हुआ है तो उसने उसको मतलब हवा बनाए हुआ है, ठीक है, तो अब आप उसके सामने खड़े हो गए तो ऑफ कोर्स आप अपना सारा लेक्चर भूल गए, ठीक है, मैं तो हाँ तो वो तो नहीं तो ये तो लेकिन तो फलां तो मैंने तो, अब जब ये कहने शुरू होते हैं तो उसको, तो अब वो दोस्त पीछे से उसे कहता है बोल सब कुछ, ठीक है, तो उस दोस्त की तरफ देखता है और फिर लड़की की तरफ देखता है और एक सांस लेता है लंबी से और कहता है सब कुछ समझ रही? ये मैंने इसका एक छोटे से लतीफे में पूरी कहानी डाल दी है ऐसे ही, और मैंने पूरा समा बांधा है ताकि हर बंदे को नजर आए ये दोस्त कौन है, वो दूसरा कमीना दोस्त कौन है, वो लड़की बेचारी सामने कौन है जो दुपट्टा सीधा करके घबराई हुई है, ठीक है जी, और आपकी परफ्यूम से उसका सांस बंद हो रहा है और उसकी बॉडी ओडोर से आपका भी बंद हो रहा है, लेकिन आप जज्बाती हुए इस वक्त, ठीक है जी लोग बड़े कमीने हैं जब वो कहते हैं सर आप तरह खुल के हंसते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, अरे भाई मैं रोज हंसता हूँ लेकिन इतनी सीरियस बातें हो रही होती हैं लाइफ में, तो मैं लोगों को हंसाता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, उन पे भी हंसता हूँ, हर वक्त लोगों की टांगें खींचता रहता हूँ, लेकिन शो में मैं कहाँ हंसूँ, कोई मुझे हंसाने वाला बंदा आए मेरे से हंसने की कोई बात करे, ठीक है, फिर हम भी हंसेंगे आहिस्ता आहिस्ता।
1: आप तो हमें इतना हंसाते हैं, हमारे तो मुंह दुखते हैं उसके बाद
0: क्योंकि सीरियस भी तो बातें करके सर भी तो दुखाता हूँ, तो फिर मेरा हक बनता है मैं मुंह भी दुखाऊं हंसा हंसा के क्योंकि दुनिया में जो लोग आपको बहुत हंसाते हैं ना, फिर यही लोग आपको बहुत रुलाते भी होते हैं। हाँ, लेकिन आपने ये सोचना होता है कि जिस इंसान ने हंसाया है उसको कुछ थोड़ा बहुत लेवरेज दें कि वो कभी कभी आपको रुला भी सके, क्योंकि हंसाया भी तो उसी ने है ना, ये बिल्कुल ऐसा है, वही रब है हमारा जिसने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ जो हम भूल जाते हैं, और थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत तकलीफ, थोड़ी बहुत परेशानी, वो भी हमें इतनी बड़ी पहाड़ जैसी इसलिए लगती है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को नहीं जानते, हम गजा के लोगों को कभी नहीं मिले उनको जानने के क्या है, हम कश्मीर के लोगों को कभी नहीं मिले, हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो लोग खा पी नहीं सकते उनको कभी नहीं मिले, अंडर नरिश्ड हैं, हम बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जिन लोगों को नहीं मिली, कई मजबूर गरीब लोग जो अदालतों में जेलों में सालों से सड़ रहे हैं बिना किसी गुनाह के, हम कभी उनसे नहीं मिले। तो जब हमें नहीं पता होता ना किसी चीज़ के बारे में तो हम समझते हैं जो हमें पता है बस वही सब कुछ है और मुझे सब कुछ डिज़र्व करता हूँ, हालांकि अगर हिसाब किताब पे दुनिया मेरा बा जाता ना तो बहुत सारे लोगों के पास जो अभी है वो कुछ भी ना रहता और जो कुछ मिला हुआ है वो उनसे ले लिया जाता, तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन चीज़ों का जो हमें बिना अर्न किए डिज़र्व किए मिला हुआ है, हमको सिर्फ कोशिश करके इसका शुक्र अदा करना है और एक स्टेप फर्दर जाना है तो इसको डिज़र्व करना है, एक स्टेप और फर्दर जाना है तो इसको लोगों के साथ शेयर करना है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो यू नो डोनेशन इन काइंड है, चाहे किसी से अच्छी प्यार भरी बात है, या कोई आसानी पैदा कर सकते हैं आप किसी भी अच्छी चीज़ में, आप कर सकते हैं कोई ऐसा बूटा लगा सकते हैं जिसके साए में कल कोई बैठेगा, कोई ऐसी यू नो कोई ऐसा ज़कात का काम, कोई खैरात का काम, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों की भलाई हो सके, उनकी ज़िंदगी उनका मकसद क्लियर हो सके, यही सब कुछ है और यही बचत है, बाकी सब कुछ खाया पिया, गिलास तोड़ा, बाहर आने निकल आने, आखिर में ये किसको नहीं पता, यही हिसाब किताब क्लियर लिखा हुआ है। दुनिया में रब की किताब वाहिद चीज़ है, उसने पूरा हिसाब किताब लिख कर आपको दे दिया है, ये करोगे तो ये होगा, तुमसे पहले ने ये किया उनके साथ ये हुआ, देखो तुम कहीं ऐसे ना बन जाना, सोचो समझो देखो उसको, इस तरह चीज़ों को डील करो, जो चाहो खाओ पियो उठो बैठो घूमो, उसके साथ इस चीज़ को पकड़ के रखना है और टुकड़ों में नहीं बटना है, कुछ एक्चुअल में नहीं है, और अगर नहीं करोगे तो ये ऐसा होगा और इस हद तक ख़तरनाक होगा। और ये दूसरा जो करते हो जिसमें छोटे से अच्छे कुछ मुट्ठी भर नेक काम, आसानी पैदा करने वाले, हकीकत को जानने वाले, लोगों के को मदद करने वाले, यतीम गरीब मस्कीन के साथ या जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके साथ मदद कर देने वालों के लिए, ये है और ऐसा ऐसा ऐसा है जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं है। तो अब आपने ट्रेड करना है या नहीं करना, ये आपके लिए है। और इसी सब के बीच में रहते हुए, सब कुछ इन्जॉय करते हुए, रब की मेहरबानियों को भी आप थोड़ा थोड़ा करके भी वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। काम इतना आसान है, इतना आसान है, इसीलिए उसको गफूर रहीम कहते हैं, क्योंकि सब कुछ दे दिया है, उसके बीच में तुम्हारी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए तुम्हारी ये सब ये किया जाता है, और आखिर में होगा, होगा वही जो उसने कहा है। कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई बंदा कुछ भी कह दे वो नहीं होगा, पावरफुल से पावरफुल आदमी कुछ भी कह दे वो नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उसने कहा है वो होता आया है, होता है, होता रहेगा। इसके अलावा अगर कोई आपके पास और भी, इसीलिए जिस तरह वो बात करता है, जैसे कम्युनिकेट करता है, जैसे वो चीज़ों को करके दिखाता है, इतनी ऑथेंटिसिटी सिर्फ उसमें है, इसीलिए वही अजीम अजीम तर है, और इसीलिए वो ऑल नोइंग ओमनिपोटेंट है। तो फिर लड़ाई किस बात की है? और ये जो बहुत मज़े के जो ना इज़राइलाइट्स को जो इज़राइल कहते हैं, उसका मतलब है द वन हु रेसल्स विद गॉड, यही हम करते रहते हैं, हम हर वक्त खुदा के कानून से रेसल करते रहते हैं, हमें दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, नविश्ता ये दीवार जिसे कहते हैं, हमें पता है क्या हमारा हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हम किस काबिल हैं किस जोगे हैं, सब पता है हमें, इस वक्त क्या हो रहा है आगे क्या हो रहा है, हम बड़े रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट हैं, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन हम सिर्फ जोर लगाते रहते हैं, खामखा जोर लगा के कुछ नहीं होता, हमने भी लगाया 35-36 साल, सब का सब ज़ाया हो गया, जब समझ आया तो ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो कुछ चाहिए था वो वैसे ही मिल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, तो इतना ज़ोर क्या लगाना, इतना वरी करने की, इतना यू नो पागल होने की, इतना जहनी मरीज़ होने की, इतना लोगों को पे यू नो जज्बात और हिजान अंगेज़ किस्म की वॉर लॉन्च करने की, कोई तुक नहीं बनती है, कुछ भी नहीं, खाम खा का ज़िया है। और जिसको नहीं समझ आती वो तो करता रहता है, रोज़ करते हैं, देखते रहते हैं, जिसने किया वो सिर्फ रास्ता यू नो ये बता सकता है, करके दिखा सकता है, बाकी जिसका जो दिल चाहता है वो करे। ठीक है जी, कैसे बनाती हैं आप ये क्लिप?
1: मैं कुछ नहीं करती साला, सब कुछ आप करते हैं।
0: यानी कि फिर वही वाली, ये तो आप बिल्कुल वही कह रही हैं जो मैं भी कुछ नहीं करता, ये सब आप करते हैं क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं करके अगर ये बनता है और आपका भी कुछ नहीं करके ये बनता है तो अल्लाह करे हम सारे, अच्छा हमारे बारे में शायद उन्होंने कहा था ना वो जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, तो ये था वो कमाल, अब हमको समझ आए, हम तो जलाल से जमाल तक, बल्कि जमाल से जलाल तक पहुंचे और फिर कहीं ना कहीं हमें नजर आया कि हम कमाल मिस कर रहे हैं, और ये सारे के सारे मेरे नेफ्यूज के नाम है।
1: अच्छा, ये जब भी आपको बताएं
0: हाँ जी सारे के सारे बहुत टैलेंटेड और कमाल बच्चे हैं
1: माशाल्लाह
0: सारे अपने आप को हमसे बहुत समझदार समझते थे समझते हैं और समझते रहेंगे। और एक मेरे भांजे ने एक दफ़ा मुझे कहा जवानी में कि मामू अगर मैं आपकी तरह हैंडसम होता ना, ठीक है ये बात है आज से कोई 25 साल पुरानी, और वो भी बाद में उसने भी आर्मी वगैरह ज्वाइन किया, मामू मैं आपकी तरह होता ना तो मैं लुट डाल देता, ठीक है। तो मैंने आगे से कहा मेरा पुत्र अल्लाह इसीलिए गंजे को नाखून नहीं देता क्योंकि वो अपना सर छीन लेगा, तो रब ने तुझे मेरी तरह नहीं बनाया क्योंकि उसको पता था तो लुट डाल देगा, तो लुट डालने की जरूरत नहीं है, लुट आपके होने से वैसे ही पड़ जाती है। आज वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा अपना रैंक्स वैंक चीज़ें शीज़ें ये सब कुछ करता है, तो मुझे उसके बारे में कुछ उसने बड़ी एक दो बातें पता, बड़े साल हो गए तकरीबन 15 भी मुलाकात नहीं हो सकी, वो अपने काम पे होता है, तो एक दो बातें मुझे पता चली जो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो जब मुलाकात होगी। और ये वो बच्चा हुआ करता था जब मैं स्कूल में हम पढ़ा करते थे, तो हम सीनियर थे स्कूल में, और इसको नया नया स्कूल में दाखिल किया, तो वो स्कूल वही था, तो जहाँ हमारी क्लास थी ना उसके बिल्कुल साथ वो घंटी लगी हुई थी, वो पीरियड दिखाने के लिए, नहीं वो क्लास का जब
1: हाँ
0: पीरियड
1: जी
0: ख़त्म होता है तो
1: जी
0: वो जो घंटी बजती है तो बिल्कुल हमारे कान के पास लगी होती थी। तो इसको हमने नया नया स्कूल में दाखिल किया, उसी स्कूल में, उनके रिश्तेदारों का भी था वो, तो स्कूल में हम बैठे हुए हैं, हमारी टीचर कोई बड़ी सब मुश्किल चीज़ मतलब पढ़ा रही है और हम बैठे हुए हैं वहाँ क्लास में, वो हम भी 5वीं 6वीं में थे, 10 12 साल के तो एकदम खिड़की में से आवाज़ आई, मामू
1: ज्यादा ना आप लोग का एज डिफरेंस कम है जिस
0: अरे मैं तो जब
1: रीज।
0: पैदा हुआ था तो बताया तो है, मैं जब पैदा हुआ था तो मैं मामू था। हाँ जी, मेरी मेरी एक
1: अच्छा
0: भांजी मेरे से 1 साल बड़ी है। हमें पैदा करने के लिए बड़ी तकलीफें काटी गईं, 35 34 साल की तपस्या की गई।
1: हाँ आप बता रहे थे
0: हाँ जी,
1: खान
0: तो
1: जी
0: उस तपस्या के
1: का
0: बाद हम पैदा हुए। पठानों के लिए उनको लगता था हमारी बड़ी ज़मीन है, जो कि बाद में पता चला इतनी थी नहीं और उस गांव में, गांव के जो ना जो कुछ लोग होते थे जमींदार, उसमें हम लोग हुआ करते थे।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर। आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: Days of Dhul Hijjah on Inspire FM. You can gain the blessings and rewards by fasting the first 9 days, even if it is not mandatory for us to do so. If abstaining from eating, drinking or intimacy is unachievable, fasting only on the 9th day, the day of Arafah, can also bring huge benefit as it expiates the sins of the previous year and the year to come. Make sure to stay tuned to Inspire FM. Assalamu alaikum.
7: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
10: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Sleep well, eat right, move and cheer, brain in top form, focus clear, hydrate, breathe and take a break, stronger mind, no mental ache. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
11: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension, and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
12: Assalamualaikum guys, this is me, Baby Bilal.
13: And it's me, Fermi Giles.
12: We are here to tell you about the Kids Right Show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't
13: That's
12: know
13: right.
12: where he is. He's not here at the moment. Fermi Giles, where do you think he is?
13: Oh, well, I think he's probably sleeping somewhere.
12: Oh, okay. Well, whatever yes. the case is, guys, make sure you tune into
13: the Kids Round Show
12: and Inspire 105.1 FM.
13: The UK's finest.
12: Okay, then.
14: Hold on
12: a minute.
14: Sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay. This is Khalil Muhammad and...
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
16: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: जो चार पाँच साल मैंने और मैं बड़े प्यार से मैं कहता हूँ फिर मैं जब सिविल लाइफ में आया तो मैंने देखा तो यहाँ तो कोई सिविल ही नहीं है तो फिर तो आर्मी में उसके मसाइल थे सिविल में इनके मसाइल थे तो दोनों को मिला के जो चीज़ें हमने की फिर जो रिलीजन में हमें जो पढ़ाया गया जब मैं यहाँ पे आया उस वक्त भी मैं डिफरेंट रिलीजन पढ़ता था मेरे क्रिश्चियन हिंदू सिख वगैरह फ्रेंड हुआ करते थे जो कि लोगों को समझ नहीं आती थी तब मेरे और मीडिया के भी फ्रेंड्स थे कुछ और पॉलिटिशियंस भी फ्रेंड थे बड़े बड़े लोग भी मेरे दोस्त थे तो वो भी लोगों को समझ नहीं आती थी और मुझे रिपोर्ट्स आती थी कि भाई आप इससे मिल रहे हैं उससे मिल रहे हैं क्या चाह रहे हैं मैं कह जी मैं कुछ नहीं चाह रहा ये मलंगों के पास खुद आते हैं तो हम तो ऐसे ही लाइफ देख रहा था मैं एक्सपीरियंस कर रहा था हम तमाम रिलीजन के लोगों को मिल रहा था क्या नाम खाने हर किस्म के रेस्टोरेंट्स में जाके खा रहा था ताकि यू नो सब मुझे पता चले क्या है क्या नहीं है हमने तो ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी हलीम 21 ईयर तक हलीम मैंने लाहौर में आके खाई निहारी मैंने कभी नहीं खाई थी वो वहाँ पे हम तो सीधा सीधा पुलाव बिरयानी तो बिरयानी भी इस तरह सच नहीं होती थी पुलाव होते थे साग गोश्त आलू गोश्त इस किस्म के जो ना पाए इस किस्म के खाने होते थे ये खाकीना और ये सारी चीज़ें तो आम ही में आके फिर लाहौर में डिफरेंट किस्म के खाने हम समझे कि ना कुन्ना क्या होता है और फिर उसके बाद हरीसा क्या होता है ये सारी चीज़ें फिर हमने फिर अमेरिकन फूड्स एंड इटालियन फूड्स एंड सारे फिर हमने मैंने कहा अपनी तनख्वाह से हम ये सारी चीज़ें स्टेक्स इन्जॉय करेंगे सब कुछ करेंगे ताकि पता चले तो बाकी मैनरिज्म वगैरह तो सारी आम ही आपको सिखा देती है तो ये करते करते करते फिर अब मैं कहीं बैठा होता हूँ लोगों के साथ तो अच्छे खासे गोरे हमारे साथ बैठे होते हैं उनको बेसिक मैनर्स नहीं आते खाना खाने के कुर्सी पे किस तरफ से बैठना है किस तरफ से उठना है कौन सी चीज़ के साथ क्या खाना है अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं बड़े बड़े लोग उनको नहीं आता ये सब मिलियनेयर्स हैं कई बाद में बने हैं ना सो ये सारी चीज़ें बेसिक मैनरिज़म्स और सब तमीज़ तहजीब लेडीज़ के साथ मर्दों के साथ लोगों के साथ बिहेवियर करना ये सब आपको आर्मी सिखाती है और एक पूरा आपको एग्जेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ये चार्म स्कूल के अंदर होते हैं अगर आप ध्यान दें तो ये तमाम चीज़ों से और रख रखाव होता है छोटे बड़े की अदब एहतराम तमीज़ होती है सीनियर का की एक से होती है जूनियर का जिस कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसके हिसाब से उसको डील किया जाता है तो वो एक ये सारी चीज़ें सीख कर नहीं सीखी होती तो ये सब कुछ थोड़ी हो रहा होता जो आज हो रहा है तो इसलिए मेरा एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट आर्मी और बहुत बड़ा पार्ट है लाहौर का और मैं बड़ा उसको अभी भी जब जाता हूँ मैं जब भी मेरी 10 दिन की छुट्टी होती थी 5 दिन मैं लाहौर में रहता था 5 दिन 3-4 दिन घर में बाकी इधर उधर बाकी वापस आके लाहौर में क्योंकि दुनिया देख रहा था मैं ज़िंदगी देख रहा था मैंने वहीं से फिर अपनी MBA की डिग्री भी की वाइल आई वॉज यू नो डूइंग माई थिंग्स उसी में फिर मैंने मार्केटिंग में एक फैशन मैगज़ीन था उसके अंदर मैंने सेल्स का भी कुछ ऐसा काम था मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वो भी मैंने की फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से उसमें फिर बाद में मैं जैसे साल एक मुझे मिला मैंने उसमें भी काम किया फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मिलाकर फिर मैं वापडा में रहा पुलिस में रहा یو نو یہ سارے کام میں نے دیکھے کہ اسٹرکچر اپر لوور مڈل اسٹریٹا کام کیسے کرتا ہے, ریئلٹی میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں چیزیں ویسے نہیں ہوتی. پالیٹیشن سے ملا, بڑے بڑے جرنیلوں سے ملا جو کہ پالیسی اور ملک رن کر رہے تھے, گورنر سے ملا, اس طرح کی چیزیں ہوئیں. اس سے پھر مل کے مجھے سمجھ آئی کہ یہ کہانی وہ ہے ہی نہیں جو ہمیں سنائی بتائی جاتی ہے. عام آدمی بیچارے کو کچھ نہیں پتہ, وہ ویسے ہی جذباتی گلا پھاڑتے رہتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے. تو میڈیا نے جو بتانا ہوتا ہے وہ اتنی خبر باہر جاتی ہے جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور مائنڈ شیپ اپ کیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کا, اور جو کچھ بھی خبروں میں ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں کوئی خبر نہیں ہوتی, خبر کچھ اور ہوتی ہے جس کو چھپانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. پھر آپ فلموں میں آئے, موویز دیکھیں, چیزیں دیکھیں, ٹریول کیا, اس سے پھر بہت بار ساری چیزیں پتہ چلیں. پھر لکھنا شروع کیا, پھر اور لوگوں سے میڈیا میں انٹریکٹ کیا, پھر ہالی ووڈ میں کچھ لوگوں سے ملے, بات کی, کام کیا کچھ عرصے کے لیے, تو پھر اس سے اور بہت ساری لرننگ ہوئی. بہت کچھ جاننے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا ہے اور کتنا چھوٹا بھی کافی ہے اور اپنا اگر ہو تو بہت بہتر ہے, اور لوگوں کے ساتھ کلیبریشن کر کے کیسی چیزیں کی جا سکتی ہیں, اس پہ کام کیا. تو یہ سب مل کر ایک ایجوکیشن بنتی ہے, اور یہ سب جب ہو رہا تھا تو ساتھ انسان, مرد, عورتیں, چھوٹے بڑے, بزرگ, ان سے بہت ساری وزڈم جو ہے وہ کشید کرنی پڑتی ہے. ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا پڑتا ہے, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا پڑتا ہے, اور وہ 8-10 چیزیں جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. سب کچھ جو اتنا کچھ کم از کم ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بہت اچھی کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ ایک بڑی اچھی زندگی بنا سکتے ہیں, جی سکتے ہیں, اور رشتوں پہ اور خود پہ کام کر سکتے ہیں, اور پھر آپ اپنا ٹائم ایسا مینج کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چاہنے کے بجائے چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں, صاف ہوں, بہتر ہوں, اور ایک بیلنس کے اندر ہوں, جس سے آپ اپنی زندگی کو کریٹ کر سکتے ہیں اور آگے کسی چیز کو بھی ڈیولپ, کچھ بھی کرنا چاہیں آپ آرام آرام سے کر سکتے ہیں. یہ تھی پوری زندگی ایک بڑے سے نٹ شیل میں.
1: زبردست, زیادہ لگ تو پوری سیر کرا دی ہم.
0: دیکھیں آپ ساتھ ساتھ چل رہی تھی, کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں, تو میں نے بھی پھر نہیں بتایا, اس طرح ٹکڑوں ٹکڑوں میں پھر بتانا پڑا نا.
1: لیکن زیادہ لگ آپ نے اتنا کچھ اس لیے سیکھا کہ آپ کی آبزرویشن بہت ماشاءاللہ سے اچھی ہے, اور کوئی دوسرے بہت سے لوگ ہوں گے ان کا یہ ایکسپوجر ہوا ہوگا لیکن انہوں نے اتنا نہیں سیکھا ہوگا.
0: اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی چیزیں سیکھی ہیں نا وہ اس لیے سیکھی ہیں کہ یہ تمام چیزیں میرے پاس نہیں تھیں. آبزرویشن میری اس لیے بنی کہ جب آپ فزیکلی ویک ہوتے ہیں, مینٹلی ویک ہوتے ہیں, تو پھر آپ کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے آبزرو کرنے کی. وہ آبزرو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں فزیکلی اگر ویک ہوں تو مجھے اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اگر مجھے مینٹلی ویک ہوں تو مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے اپنے آپ کو. تو آبزرویشن سے آہستہ آہستہ کس جگہ پر آپ نے جانا ہے, کس کے پاس نہیں جانا, کس سے دور رہنا ہے. اگر آپ فزیکلی ویک ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ویک ہوتا ہے, تو کیسے چلنا ہے. تو وہ جو کمزوریاں تھیں میری, ایزما بھی چل رہا ہے, اسٹیمرنگ بھی چل رہی ہے, وہ جو انوائرمنٹ تھا میں اس میں بھی بہت انفٹ سا تھا, تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کے ڈر جو میرے تھے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے غور کرنا شروع کر دیا چیزوں کے اوپر, کیا چیز میرے لیے ہے, کیا چیز میرے لیے نہیں ہے. آبزرویشن کے ساتھ ساتھ جب آبزرو کرتے جاتے ہیں آپ تو پتہ چل جاتا ہے آپ کی ویکنیس کیا, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, کیسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے, کس سے نہیں رکھنی, کس جگہ, کس انوائرمنٹ کے اندر آپ نے چیک کر لیا چیزوں کو یہ نہیں ہے, تو آپ دور تک دیکھنے کی ابلٹی رکھ سکتے ہیں اس وقت, کیونکہ آپ کو ایک گھبراہٹ کی وجہ سے ایک آپ سوچنے کا طریقہ ایک ایجاد کرتے ہو. باقی لوگ کیونکہ طاقتور ہوتے ہیں, چیزوں کو لگتا ہے کہ ہینڈل کر لیتے ہیں, پاور تھرو بھی چیزوں کو کر لیتے ہیں, اپنی منمانی کر لیتے ہیں, تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے گھر میں میں ایک حد تک ہی زور لگا سکتا تھا, اس میں گھر میں ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے دو لوگ تھے جو سب رن کر رہے تھے, تو اس میں میں کب تک یہ کرتا رہتا. تو بالکل اسی طرح پھر جب آبزرویشن بڑھتی جاتی ہے تو پھر امیجنیشن بھی بڑھتی جاتی ہے, پھر اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز میں آپ اپنے ساتھ سچ بولنا شروع کر لیتے ہیں. مجھے بچپن سے لوگ کہتے تھے آپ اس میں بڑے اچھے ہیں, اس میں بڑے اچھے ہیں, جوانی میں کہتے تھے آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, آپ فلاں ہیں. مجھے اندر سے پتہ تھا یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کتنا میں ہوں, کس یوگا میں ہوں, اور باقی کس طرف مجھے کام کرنا ہے, اور مجھے کس, جیسے میں کرکٹ کھیلتا تھا سب کہتے تھے آپ بہت اچھا کھیل سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ مجھے ایگزیکٹ پتہ تھا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, ایک حد تک میری ابلٹی ہے, اس سے آگے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ مجھ میں نہیں ہیں, وہ فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے یا ٹیکنیک نہیں ہے, یا تو پھر مجھے وہاں روک کر کسی اور طرف سوچنا تھا. میں اس طرح نہیں کر سکتا تھا, میں کھیلتا رہوں اور اپنی زندگی ضائع کر لوں اس سوچ میں کہ میں ایک دن پاکستان ٹیم میں چلا جاؤں گا. آئی واز ناٹ دیٹ گڈ, سمپل. اس طرح باقی میں نے کچھ اور چیزیں ٹرائی کیں, آرمی میں گیا, کچھ اور چیزیں میں نے دیکھیں, سول میں کچھ کام کیے میں نے دیکھا, پھر ایک دن میں چیزیں کر کے چھوڑتا چلا گیا और चीज़ों को ट्राई करता गया. लोग जो कह रहे थे कि वक्त ज़ाया हो रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं था. लोग जो कह रहे थे कि आप इसमें अच्छे हैं उसमें बुरे हैं, उनको कुछ पता नहीं था. लोग जो है ना, वो बहुत लगता है उन्हें पता है, बट इतना उनको पता नहीं होता. वो लगता है कि वो समझते हैं, लेकिन वो इतना समझते नहीं जितना आप समझते हैं, क्योंकि आप सिचुएशन के अंदर होते हैं और आप ऑनेस्टली सिचुएशन को देख रहे होते हैं, और आप दीवाने का ख्वाब नहीं देख रहे होते. आप हाजिर रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, और आप प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं. फिर लोगों की बातों में आप नहीं आते. एक वक्त के बाद जब आप ये सारी चीज़ें सीधी कर लेते हैं, फिर जब आपसे लोग कहते हैं ना आप ये कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ चलिए ट्राई कर लेते हैं. तो फिर जब मुझे किसी ने कहा कि आप एक्टिंग कर सकते हैं, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं. आप राइटिंग कर सकते हैं, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं. मुझे ये भी किसी ने पहली दफ़ा कहा था आप रेडियो बड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो मैं फिर डैलस में आया तो मैंने कोशिश की चलो रेडियो करने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा हो गया. इसी तरह मुझे किसी ने कहा था आप लिख बहुत अच्छा सकते हैं. ये आशा जी ने कहा था बाय द वे, स्टेज प्ले वाला, हमने किसी से लिखवाया था, उल्टा सीधा था, उल्टी सी मैं ये चीज़ करवाना नहीं चाहता. तो उन्होंने कहा था ऑनेस्टली आई थिंक यू कैन राइट सो मच बेटर देन दिस आज़ाद. और दिन थे नहीं मेरे पास, कुल 4 दिन रह गए थे. उसमें जी लैंड कर चुकी थी सैन फ्रांसिस्को में, तो अब मुझे ही लिखना था. तो जब मैंने लिखा तो वो जिस तरह लिखा गया, जिस तरह फ्लो आया, उसके अंदर मुझे भी मज़ा आया. तो फिर हमने दूसरा लिखा, फिर उसके बाद तीसरा चौथा लिखा. फिर यही तरीका था ऑब्जर्वेशंस को लोगों तक पहुंचाने का. फिर जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके आपने ये काम करना था, आप साथ साथ प्रिपेयर करते जाते अपने आप को, उस पर काम करते जाते हैं मेंटली फिजिकली और उस क्राफ्ट के ऊपर. फिर एक दिन आता है जब आप सही राइट टाइम एंड स्पेस में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए. तो वो फिर जब हम रेडी हुए तो पहले उस्मा गिलानी वाला आया, फिर नुमान एजाज का आया, फिर अभी एक दो और चीज़ों के लिए हम तैयारी पकड़ रहे हैं पिछले 3-4 साल से. अब माइंड बन गया हमारा, तो अब सब कुछ सामने आ जाएगा खुद ब खुद. तो दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. और कैसे कैसे आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं मेरी ज़िंदगी की, जो सारी चीज़ें जो मैं शेयर करता हूँ, इसलिए कि आपको मैनिफेस्टेशन नज़र आ सके. इसलिए कि एक आम सा आदमी आम से तरीके से, आम से छोटे से टैलेंट के साथ अगर ये चीज़ें कर सकता है, तो ज़्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूँ वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे से ज़्यादा बहादुर हैं, मेरे से ज़्यादा जो है उनका टैलेंट है, वो मेरे से ज़्यादा उनके पास गिफ्ट है, और मेरे से ज़्यादा ज़िंदगी है उनके अंदर. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दे हैव मोर लाइफ देन आई हैव इनसाइड ऑफ मी. और उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो भी बहुत ऐसी हैं कि जिसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में. तो फिर मैं ये करके उनको सिर्फ दिखा देता हूँ कि वो जहाँ तक जाना चाहें, जितना गुड़ डाले उतना मीठा हो सकता. मैं सांस ले लूँ?
1: हाँ ले लिया.
0: क्या सीखा आपने?
1: बहुत कुछ सीखा आज मैंने.
0: आपको हर दफा ये लगता है कि इतना सीख लिया अगली दफा क्या सीखूंगी, फिर आपको लगता है नहीं आज सीखा हमने.
1: नहीं आजादा, मैं अभी जो बात कर रहे थे, आप तो माशाल्लाह आप बहुत आर्टिस्टिक हैं, तो आर्टिस्ट की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली?
0: पहले तो आर्टिस्ट वो होता है जो पहले थोड़ा सा ऑटिस्टिक हो. समझ रहे हैं? आर्टिस्ट जो होता है ना वो पोएट एट हार्ट होना या आर्टिस्टिक होना. कई दफ़ा जिस एनवायरनमेंट में हम हैं ना, हम इतने बदकिस्मत एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं कि आर्टिस्ट से शुरू में ही लोग डर जाते हैं, उसको नाजुक समझना शुरू हो जाते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं. आप कोई बंदा, जब हम बड़े हो रहे थे तो कोई बंदा FSC में अगर साइंस के बजाय आर्ट्स ले लेता, सारे उसको पहले से ही वीक समझना शुरू कर देते थे. ठीक है, तो मैं, अच्छी बात यह है जो काम मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, शुरू में मुझे नहीं पता था ये सब कुछ कि मैं ये एक्टिंग डायरेक्टिंग राइटिंग पोम्स एंड ये सब कुछ करूँगा. ना मैंने कभी ज़िंदगी में कोई एक लाइन भी लिखी थी. लेकिन मैं जिस प्रोफेशन में, मैं लकी ये था कि मैं जिस प्रोफेशन में गया ना, वो प्रोफेशन आपको मेंटली और फिज़िकली साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको मैनेजमेंट का आदमी बनाता है. आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. आप पहले खुद को मैनेज करते हैं फिजिकली, इतनी मुश्किल वक्त में से आप गुजरते हैं, आपको पता चलता है आप नहीं मरेंगे. और फिर उसके बाद आप उसकी मैनिफेस्टेशन देखते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पावर्स दी जाती हैं, और फिर आपके लिए बहुत सारे बंदे हैं जिनका आप को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है. उनकी ट्रेनिंग से लेके उनकी लाइफ पूरी आप मैनेज कर रहे होते हैं. तो जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं, ऑफिस को मैनेज करना, किसी आउटफिट को मैनेज करना, किसी बंदे की लाइफ को मैनेज करना, और ये सब आप खुद पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं खुद पे अप्लाई करना, लेकिन जब आप खुद पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. जैसे आप एक यूनिट के या किसी आउटफिट के फाइनेंसिस को हैंडल करते हैं, आप अपने भी हैंडल करना सीख लेते हैं. उसमें 400-500 टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट इलाकों से लोग आए होते हैं, किसी को प्यार से समझाना है, किसी को गुस्से से, किसी को डंडे से, किसी को सजा से, किसी को वर्बल वार्निंग से, किसी को बाकी चीज़ों से. उसके बाद ये सब तरीके भी आप सीखते हैं और अपने आप पे और अपनी फैमिली पे, अपने घर पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. तो मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है. लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट्स हैं। जब आप ये सीख लेते हैं मैनेज करना, तो उसके बाद कोई भी चीज़ जब आप क्रिएट करने जाते हैं तो आपको पता होता है ये मैं चीज़ क्रिएट करने जा रहा हूँ या मैं काम करने जा रहा हूँ, इसमें फंड्स कहाँ से आएंगे, मैं सपोर्ट खुद को कैसे करूँगा, इस वक्त सिचुएशन क्या है मेरी, तो आप मैनेज करते रहते हैं लाइफ को साथ, हर वक्त आप मैनेज कर रहे होते हैं, यही काम है। सो जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं तो फिर कब आप पोएम्स लिखते हैं, फिर किस प्लेटफॉर्म में आपने ये पोएम सुनानी है या किस चीज़ का इसको हिस्सा बनाना है, प्ले अगर आप करते हैं, अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है रेडियो का जिसमें सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है, डिजिटल मीडिया भी इन्वॉल्व है, शहर में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक आपने एक चीज़ बना ली है, तो उसमें आप अगर लोगों को मूवीज़ दिखाना शुरू करें तो वो भी चल जाता है काम। अब आप आर्ट एग्जिबिशन करें कि जिस किस्म के हमारे पास लोग हैं वो भी चल जाता है, क्लोज एग्जिबिशन करें वो भी चल जाता है, इसी तरह आप स्टेज प्ले लोग जाके यू नो ब्रॉडवे पे जाते हैं, इतने महंगे महंगे $500 के टिकट ले रहे होते हैं, $50 में भी आप ब्रॉडवे का एक टाइप का एक शो दिखा सकते हैं जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हंसना खेलना और कोई मकसद की बात भी हो सकती है, तो आप स्टेज प्ले कर लेते हैं। इसी तरह आप यू नो फिर टाइम मिलता है आपको, आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर एक्टिंग असल वाली देखें कि होती क्या है, जुमले पे जुमला बिठा देना या लाइन डिलीवर कर लेना एक्टिंग नहीं होती है, तो इसके लिए फिर मेथड एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए एले गया मैं, वहाँ से फिर मैंने कुछ सीखा, क्योंकि वो स्कूल ऑफ आर्ट एंड थिएटर है, तो उसमें फिर थिएटर कैसे बनता है, उसमें कैसे एक्टिंग होती है, थिएटर की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग, वेब सीरीज़ की एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग, ये डिफरेंट होती है, इसे बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे न्यूआंसेस होते हैं तो आपको उनके साथ एडजस्ट करना होता है, ये करेंगे तो होगा, कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं करता, और कोई बंदा भी मुझसे या अपने आप से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं पहले दिन ही बहुत अच्छी नज़म लिख दूंगा, बहुत अच्छा प्ले लिख दूंगा या बहुत अच्छी एक्टिंग कर लूंगा, लेकिन अलॉन्ग द वे क्योंकि ये पर्सनैलिटी और चीज़ें बिल्ड अप हो रही होती हैं आपके अंदर, वो कैरेक्टर लिखा किसने, मैं नहीं लिखा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, एक्ट उसमें एक कौन कर रहा है वो भी मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऐड अप करती हैं कॉन्फिडेंस से, और जो भी घबराहट और नर्वसनेस होती है उसको हैंडल करती हैं और आप एक काम कर जाते हैं और डिसेंट सा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो पहले से दूसरे से बेहतर होता चला जाएगा। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट और एक्टर्स होते हैं जो एक ही काम करते हैं, वो यही काम 15, 20, 25, 30 साल से कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका काम ज़्यादा रिफाइंड होता है। अगर आप उनके साथ एक जगह हैंडल ही कर लें उस फ्रेम को, स्पेस को, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, जैसे हमने हाला में किया, वहाँ पे सबसे जूनियर मैं था जो पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा था, बाकी 15-20 सालों से ये काम कर रहे थे लोग, सो उनकी बहुत सारी फिल्म्स कर चुके थे वो, तो उनके साथ भी काम किया, ठीक ही था, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि बहुत बेहतर किया जा सकता था उसमें, कुछ चीज़ों को वरी करने के बजाय अगर मैं और ज़्यादा अच्छी टेक्निक से करता तो और भी अच्छा हो जाता। तो इस तरह ये चीज़ें खुल कर आहिस्ता आहिस्ता करने और खेलने से ये चीज़ें पैदा होती हैं। कुछ लोग लकी होते हैं, शुरू में ही जिस काम के लिए वो पैदा होते हैं उनके हाथ लग जाते हैं, कुछ लोगों को लोग बता देते हैं आप इसमें बड़े अच्छे हैं, उसमें वो काम करते हैं और उसमें वो एक्सेल कर जाते हैं, कुछ लोग अलॉन्ग द वे सिचुएशन एक ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक चीज़ का पता लग जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं, जैसे ये रेडियो का शो, मुझे तो कभी लगता भी नहीं था मैं शाय आदमी हूँ, मेरी नेचर बड़ी डिफरेंट किस्म की है, प्राइवेट भी बहुत हूँ, तो मैं ये काम कैसे करूँगा, लेकिन करते करते ये भी इतने सालों तक हो ही गया, अभी भी मैं रोज़ इस पर काम करता रहता हूँ बेहतर करने के लिए इसको। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है, फिर फिनेस इंसान के अंदर होना, आप खाना बनाते हैं कैसे पेश करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं कैसे करते हैं, लोगों के साथ चीज़ों का बैलेंस में, अगर आर्टिस्ट एक बंदा, बेसिकली आर्टिस्ट का काम पता है क्या है, आर्ट क्रिएट करने वाला एक ही है जिसने ये यूनिवर्स बनाई, जिसने ये दुनिया बनाई, वो आपको एक ब्रेन वेव देता है, आप उस ब्रेन वेव के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर एक चीज़ बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो कोई लिखने की चीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कॉम्पोजिशन है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उस मोमेंट में आप उस चीज़ को पकड़ते हैं और उसमें आपकी इतनी ज़्यादा से होती नहीं है, आप उसमें से खुद बाहर निकल जाएं और वो चीज़ जैसे है उसको वैसे पेश करने की कोशिश करें, और उसको नोक पलक संवारने में, जैसे यू नो एक स्कल्प्टर होता है ना, स्कल्प्टर जो होता है वो स्कल्प्चर बनाते हुए भी, वो किसी ने जब कहा था ना, जो मुजस्मा होता है ना वो पहले से पत्थर के अंदर होता है, आर्टिस्ट का क्या काम होता है, वो सिर्फ उसकी जो साइड की फालतू की जो पत्थर है वो हटा देता है और उसके बीच में से वो निकल आता है। तो बिल्कुल इसी तरह आर्टिस्ट का भी एक्चुअल में ये काम होता है कि उसको एक चीज़ है, उसकी ब्रेन वायर्ड होता है एक सर्टन तरीके से, अब उसने उस ब्रेन वेव को पकड़ के उसको कैसे करना है। कुछ लोग बहुत लेज़ी होते हैं इसके साथ, कुछ लोग इसको बहुत एक गिफ्ट को गिफ्ट की तरह संभाल के रखते हैं आखिर तक, तो वो बहुत लंबे अरसे तक कोई चीज़ आपको दे सकते हैं। सो ये चीज़ होती है, कभी ये आपको हिट कर जाती है, कभी आप इसको हिट कर जाते हैं, और कभी एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक काम करते हैं और वो काम निखर जाता है और उसमें आपको मज़ा आने लग जाता है, उसमें रेसिप्रोसिटी जो है, लोगों को जो चीज़ उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है उससे आपको डोपामिन इफेक्ट मिलता है और फिर आप चीज़ों को क्रिएट करने लगते हैं। तो ये एक पूरा सफर हो सकता है किसी भी आर्टिस्ट का। कैसा था ये वाला आखिरी पॉइंट?
1: बहुत जबरदस्त था ज़्यादा।
0: कोई पॉइंट मिस हुआ आज?
1: नहीं।
0: ठीक है, ये नाइक्विल हल्की सी रात को लेके अगर ये आदमी कर सकता है तो इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है।
1: आपने नाइक्विल ली और ये हाल है
0: रात को रात को छींके शुरू होगी, तबीयत ऊपर नीचे होगी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ी सी ले ले ताकि सो भी जाए और सुबह का काम अब मैंने नहीं छोड़ना क्योंकि मैंने वादा किया मंडे वेंसडे। तो अगर मैं मंडे वेंसडे को भी नहीं कर सकता, मैंने फ्राइडे ऑफ भी लिया हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चार दिन मैंने ऑफ लिए, तीन दिन मैं शो के बारे में और रेडियो के बाकी काम करता रहता हूँ, तो फिर मैंने कहा कम अज़ कम इतना तो कर, इतना करूँगा तो बाकी का काम भी होगा। और बाकी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, ये जो मैंने बाकी दिन ऑफ लिए उसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो जो मैं कर पा रहा हूँ ना, स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहा हूँ, प्लेस के ऊपर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊंगा, आपका दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाएगा
1: इंशाल्लाह ताला ताला, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
0: ठीक है, और आप इतने दिनों के बाद आए, उम्मीद करता हूँ, और आपने इतना साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोगों के गोश गुजार किया आपने, ठीक है, उनके कानों में से गुजारे, इस तरह उनके कान साफ रहेंगे। और मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं होगी, वो एक दफ़ा उन्होंने जिसको हम जाने लगे आर्मी में, तो उन्होंने कहा जी आपके कान साफ़ करने लगेंगे, फिर कानों में जैसे सैलाब आ जाता था पानी का, आपको ने कभी कराया है वो?
1: हाँ जी अजारा, वो पहले तो उसी तरह वो पानी डाल के साफ
0: दे, दे वो डैमेज, तो उसके पानी के अंदर केमिकल चीजें होती हैं और इस तरह प्रेशर दे दे के कान का पर्दा फट सकता था, वो बेवकूफी थी करना, आजकल के जमाने में कोई सेंसिबल आदमी वो काम नहीं करता।
1: नहीं नहीं वो पहले जमाने में।
0: और एक और जाहिलों ने काम किया, मेरे दांतों में शायद कहीं कैविटी थी मोलर्स में, उन्होंने उसमें मर्करी डाल दिया। अब जितनी भी मैं नई साइंस पढ़ रहा हूँ वो सब के सब कह रहे हैं कि आपने वो मर्करी निकालना है, और जो मर्करी निकालना है वो मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो मैंने कहा ये कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा अब नई नई चीज़ें आ गई हैं जो बड़े हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक पीछे, क्योंकि उसके फ्यूम्स होते हैं, मर्करी तो मतलब कातिल चीज़ है, पता नहीं क्यों ये मर्करी डाल रहे थे उस जमाने में, लोहे से किसी तरह से काम चला लेते या कुछ और कर लेते, तो अब जो है वो उसको मैं अब जब भी सोचता हूँ कि इसको निकलवाऊँ मर्करी को और उसकी जगह कोई नए ज़माने की अच्छी चीज़ डलवाऊँ, तो उसमें वो कहते हैं कि जी इसके फ्यूम्स के लिए फिर आपको पीछे एक ना एक सॉकेट सी गले में रखनी होती है ताकि वो फ्यूम्स पीछे की तरफ ना जाएं आगे। अब इस बात से मैंने कहा मराने के चक्कर में, ये पहले भी हमने इतने डरे हुए हैं कि दांत साफ कराते कराते बंदे की जान भी जा सकती है, वसीम अकरम की वाइफ याद है ना आपको?
1: हाँ जी,
0: वो डेंटल से ही उनको हुआ था।
1: नहीं अजादला, ये ऐसा अजीब की चीज है कि कुछ भी हो सकता है किसी हाँ भी वक्त।
0: गए आप दांत साफ कराने, लेके आप ब्रेन का इन्फेक्शन आ गए तो लोग क्या कहेंगे, हमें तो पहले से पता था एक नॉर्मल ब्रेन का आदमी ये काम तो नहीं कर सकता जो बोल के लबाजा तो मैं जाते हुए लोग अपनी आंखें कान नाक दे रहे हैं, मेरे किसी काम के तो है नहीं, मैं ब्रेन दे जाऊंगा कि इसको खोलो चेक करो कहाँ पे चोट लगी थी बचपन में, ये जो मैं दरिया में गिरा था घोड़े से और पुल के नीचे से आया था तो वहां तो सट नहीं लगी मेरे सर में ये।
1: अल्लाह ज़्यादा, वो एक अलग वाक्य जो आपने सुनाया था, जो आप गिर गए थे,
0: आई वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, हाँ जी एक साल का था मैं, घोड़ी पे मैं शेर खान के साथ जा रहा
1: था, अजीब चीजें हुई हैं
0: पता नहीं, और जो भी हुआ उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया था, मेरी माँ कहती है, तो उसके बाद ना कोई चीज मेरी फिर एलर्जीज नॉर्मल नहीं रही, मुझे हर चीज फिर उसके बाद ही शुरू हुई थी, बट बच गए उस पानी में, सवाल ही नहीं पैदा होता था एक तरफ, दूसरी तरफ वो पत्थरों का पुल था, उसके नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर हो सकते थे बच्चे का जो सर, और जो भी मुझे चोट लगी है उसके बाद से शो निकला है शुक्र है,
1: शुक्र है
0: कुछ चोटें जैसे कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं इसी तरह कुछ चोटें भी अच्छी होती हैं लगता है अगर प्यार से मारी जाएं और रब की तरफ से ना वो एक लात जो कुब्बे को रास आ गई और उसका हंच जो था ना वो हंच बैक जो था ना वो सीधा हो गया। और बेसिकली ब्लेसिंग्स आप लोग हैं और आपने अभी जो इतना अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा इसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज एक स्ट्रेसफुल डे को डी स्ट्रेस करने में अपना तीन मेहरबान लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, आज कॉल्स वैसे कम थी लेकिन मेरा ख्याल है लोग जब आप और हम बात कर रहे होते हैं और शहनाज जी और हीरा सिंह जी तो फेवरेट लोग हैं लोगों के, तो इनकी डिस्कशन से जो शगुफे फूटते हैं जो क्लिप्स बनते हैं और जो शो जिस किस्म का बनता है लोगों को बड़ा पसंद आता है, पिछले तीनों शोज़ जो हैं ये अभी तक बहुत अच्छे रहे, मैं ग्रेटफुल हूँ और आपको रब जो है वो सेहत और भी अच्छी और बेहतर अता करे ताकि आप सारे स्वेटर के बटन खुद बंद कर सकें ठीक है जी, और खुश रह सकें इसी तरह खनखनाती हुई हंसी। जब आप नहीं थी तो हमने आपका यू आर लिसनिंग टू लेडियो आज़ाद, हेलो हेलो माई डार्लिंग्स, वो सब जो था वो हमने लोगों के गोश गुजार किया और रूहानी तौर पे आपको प्रेजेंट रखा था कि आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो हमारे साथ शो में रह सके।
1: सलामत शहजादा,
0: खुश रहें, ग्रेटफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इजाज़त चाहते हैं आपसे, वक्त हुआ चाहता है जी कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए खबरनामा, खबरनामे के बाद आपका शो, और आज का जो पोम और आपका ट्रैक जो है हम पे उधार रहा अगले शो में। अगला शो इससे बहुत बेहतर होने वाला है। उस शो से पहले हमने कुछ, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट के बारे में हमने आपसे कुछ बातें करनी है, वो भी हम दिस शो में आपसे करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स हमने आपको देने अगले शो के, और बहुत मज़ेदार टॉपिक्स जो पहले कभी किसी रेडियो पर नहीं हुए होंगे, कभी बोल के लब आज़ाद तेरे में नहीं, ऐसे एक दो टॉपिक हैं जिससे जो रिलेटेड है हमारी ऑडियंस से, वो करेंगे हम आपके साथ, कुछ फन क्रिएट करेंगे इन दिनों में, फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स, और फिर हमने शो से क्या सीखा, और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे अपने सीजन 18। ये सीजन 17 आज तक का सबसे लंबा सीजन था, और ये तमाम आप लोगों की मेहरबानियों से हम यहाँ तक पहुँचे। जो भी टूटा फूटा हमने काम किया और आप लोगों ने उसको सलाम किया, उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वो बात तो याद होगी जिसकी वजह से ये शो बना, फैला, फला फूला और यहाँ तक पहुँचा। ये करेंगे, सब कुछ हो सकता है अगर ये वो की है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और ये याद रखिएगा, ये जो चीज़ हमने एक आपके लिए बनाई है।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हमें याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Thursday, 21st of May for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Iran reviewing US response. Pakistan Army Chief heads to Tehran. Far-right Israeli minister condemned for taunting Gaza flotilla activists. UK net migration drops to 171,000 in 2025, lowest since 2012, excluding pandemic. TikTok and YouTube not safe enough for kids, says regulator. UK agrees £3.7 billion deal with six UAE states. Israel pushes for war amid US ceasefire, but its options may be limited. We'll go down in history. Villa's new heroes triumph to end 30-year wait. And now the details. Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghaei said Tehran was reviewing Washington's latest response to proposed ceasefire framework after several rounds of message exchanges mediated by Pakistan. Global condemnation is growing after Israel's far-right national security minister Itamar Ben-Gvir posted a video of himself taunting abducted Gaza aid flotilla activists as they were being mistreated by Israeli prison guards. Iran's new Persian Gulf Strait Authority has announced the establishment of a supervision area in the Strait of Hormuz that requires a permit for transit, stating that passage without permission will be considered illegal. Israeli attacks on southern Lebanon have killed more than 20 people, according to a Lebanese health ministry and media, as a ceasefire extension agreed upon between Lebanese and Israeli officials continues in name only. Net migration to the UK fell to 171,000 in 2025. New figures show the lowest since 2012, excluding the COVID pandemic. The figure reached a peak of 944,000 in the year to March 2023, but has been falling. The Office for National Statistics says the main reason for the fall last year was a drop in non-EU nationals arriving for work-related reasons, which was down 47%. Post-Brexit, there was a large increase in immigration, and policy changes from early 2024 are likely to have made an impact. Ofcom has criticized TikTok and YouTube, saying in a new report their content feeds are not safe enough for children. The findings follow the regulator's call for stronger action on children's online safety, and said Meta, Snap, and Roblox had each agreed to stronger anti-grooming measures. Ofcom added it would share concerns that sites were not effectively enforcing minimum age rules with the government, whose consultation on whether to ban social media for under 16s soon ends. UK has struck a trade deal with a group of six Gulf states, which it says will be worth £3.7 billion to the economy. The government said the deal with Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates would remove an estimated £500 million a year in tariffs from British exports to the region once fully implemented. It also said it would make it easier for British firms to expand and partner in the Gulf, which will support jobs. While US backs away from threats to resume bombing Iran if it does not agree to a peace deal, Israel's political establishment is reportedly itching for war. Shimon Raklin, an anchor for the right-wing Israeli Channel 14, blurted out apparently confidential plans about a renewed attack on Tehran, which included the location of what he claimed was a uranium storage facility that could be targeted. Members of the Israeli parliament roundly criticized Ricklin's supposed revelations, leading the anchor to say his comments were purely hypothetical. This week, Israeli media reported that Netanyahu chaired the second meeting of his security cabinet to discuss renewing the conflict with Iran. Despite billions of dollars in Israeli and US ordnance thrown at Iran, the government in Tehran remains in place. Unai Emery delivered on his promise. 3.5 years ago, he walked into Villa Park and vowed he had joined Aston Villa to win trophies. On Wednesday in Istanbul, he achieved it. Skipper John McGinn lifted the Europa League after a 3-0 victory over Freiburg to etch Villa's name into the history books again. Spectacular strikes from Yuri Tillmans and Emi Bunde sent them on their way with Morgan Rogers sealing victory. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतज़ार करेंगे। जब तक ईरान से कोई मुआहदा नहीं हो जाता, ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के मसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। रशिया और चीन ने मुश्तरका बयान में सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि अमरीकी सदर का गोल्डन डूम मिसाइल डिफेंस शील्ड का मंसूबा आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। बरतानिया ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत 6 गल्फ कंट्रीज के साथ 3.7 अरब पाउंड का तजारती मुआहदा कर लिया और ग्लोबल समूद फुलटेला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा कर दिए, इसराइली हुकाम ने तस्दीक कर दी। और अब इन खबरों की तफसील। ग्लोबल समूद फुलटेला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा कर दिए गए हैं, जिसकी तस्दीक इसराइली हुकाम की जानब से कर दी गई है। अमरीका में मुकीम फलस्तीनियों की तंजीम के मुताबिक इमदादी कारकुनों को इसराइल बदल किया जा रहा है, जबकि तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने इमदादी कारकुनों को तुर्किया मुंतकिल करने के बारे में बताया है। ख्याल रहे कि इसराइली फोर्सेस की हिरासत में फुलटेला अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफसियाती तशद्दुद किया गया है। बरतानिया ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत 6 खलीजी मुल्कों के साथ 3.7 अरब पाउंड का तजारती मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे को बरतानवी मईशत के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर सर केर स्टार्मर ने मुआहदे को बरतानवी मईशत के लिए बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि इससे तजारत, रोज़गार और इक्तसादी तरक्की को फ़रोग मिलेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये खलीजी तावन कौंसल और किसी भी G7 मुल्क के दरमियान पहला बड़ा तजारती मुआहदा है। दूसरी जनप अमरीका ने ईरान को $25 अरब के असासों की वापसी और 3.67% यूरियम अफसूदगी की पेशकश की है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतज़ार करेंगे। जब तक ईरान से कोई मुआहदा नहीं हो जाता, ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने मजीद कहा कि हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। अमेरिका का जिन ईरानी रहनुमाओं से राबता है वो माकूल लोग हैं। अमेरिकी सदर ने एक मरतबा फिर दावा किया कि ईरान डील के लिए बेताब है। उन्होंने साथ धमकी भी दी कि अगर ईरान के साथ डील ना हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। रशिया और चीन ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन डूम मिसाइल डिफेंस शील्ड का मंसूबा आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। दोनों मुल्कों ने अमेरिका पर जोहरी मुआहदों के तसलसल को नुकसान पहुंचाने और आलमी सलामती के तवाज़ुन को मुतासर करने का भी अल्ज़ाम आयद किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के मसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियत कल ईरान का दौरा कर सकती है। अहम शख्सियत के दौरे के दौरान ऐलान किया जा सकता है कि मुआहदे का हतमी मसवदा मुकम्मल हो गया है। अरब मीडिया का मजीद कहना है कि मुज़ाकरात का अगला दौर हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में होगा। ख्याल रहे कि वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अहम दौरे पर तेहरान पहुँचे हैं। मोहसिन नकवी ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात से मुतलक ईरानी आला क़यादत से मुलाकातें भी की हैं। ग्लोबल समूद फुलटेला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा कर दिए गए हैं, जिसकी तस्दीक इसराइली हुकाम की जानब से कर दी गई है। अमरीका में मुकीम फलस्तीनियों की तंजीम के मुताबिक सामीन ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Thursday, 21st of May for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. Iran reviewing US response. Pakistan Army Chief heads to Tehran. Far-right Israeli minister condemned for taunting Gaza flotilla activists. UK net migration drops to 171,000 in 2025, lowest since 2012, excluding pandemic. TikTok and YouTube not safe enough for kids, says regulator. UK agrees £3.7 billion deal with six UAE states. Israel pushes for war amid US ceasefire, but its options may be limited. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतज़ार करेंगे। जब तक ईरान से कोई मुआहदा नहीं हो जाता, ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के मसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। रशिया और चीन ने मुश्तरका बयान में सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि अमरीकी सदर का गोल्डन डूम मिसाइल डिफेंस शील्ड का मंसूबा। सामीन, ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.

0: That's us coming up to the end of this first segment, dear listeners. Hope it's all brought you a bit of peace and reflection, inshallah. Here on Inspire 105.1 FM, you've been listening to Awadi's Drive-Through. As we do go for a short pause, and we will return with more very soon, make sure you guys do stay tuned.
1: अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Naveed Aziz. Stay tuned for the best radio programming in Luton, Inspire FM.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Whoever enters paradise is blessed with a life of joy. He will never feel miserable. His clothes will never wear out. And his youth shall never fade away. Sahih Muslim.
3: شبكة سما الإنشادية تقدم

0: from the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
1: This is the national and international news today, Thursday, 21st of May for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Iran reviewing US response. Pakistan Army Chief heads to Tehran. Far-right Israeli minister condemned for taunting Gaza flotilla activists. UK net migration drops to 171,000 in 2025, lowest since 2012, excluding pandemic. TikTok and YouTube not safe enough for kids, says regulator. UK agrees £3.7 billion deal with six UAE states. Israel pushes for war amid US ceasefire, but its options may be limited. We'll go down in history. Villa's new heroes triumph to end 30-year wait. And now the details. Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghaei said Tehran was reviewing Washington's latest response to proposed ceasefire framework after several rounds of message exchanges mediated by Pakistan. Global condemnation is growing after Israel's far-right national security minister, Itamar Ben-Gvir, posted a video of himself taunting abducted Gaza aid flotilla activists as they were being mistreated by Israeli prison guards. Iran's new Persian Gulf Strait Authority has announced the establishment of a supervision area in the Strait of Hormuz that requires a permit for transit, stating that passage without permission will be considered illegal. Israeli attacks on southern Lebanon have killed more than 20 people, according to a Lebanese health ministry and media, as a ceasefire extension agreed upon between Lebanese and Israeli officials continues in name only. Net migration to the UK fell to 171,000 in 2025. New figures show the lowest since 2012, excluding the COVID pandemic. The figure reached a peak of 944,000 in the year to March 2023, but has been falling. The Office for National Statistics says the main reason for the fall last year was a drop in non-EU nationals arriving for work-related reasons, which was down 47%. Post-Brexit, there was a large increase in immigration, and policy changes from early 2024 are likely to have made an impact. Ofcom has criticized TikTok and YouTube, saying in a new report their content feeds are not safe enough for children. The findings follow the regulator's call for stronger action on children's online safety, and said Meta, Snap, and Roblox had each agreed to stronger anti-grooming measures. Ofcom added it would share concerns that sites were not effectively enforcing minimum age rules with the government, whose consultation on whether to ban social media for under 16s soon ends. UK has struck a trade deal with a group of six Gulf states, which it says will be worth £3.7 billion to the economy. The government said the deal with Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates would remove an estimated £500 million a year in tariffs from British exports to the region once fully implemented. It also said it would make it easier for British firms to expand and partner in the Gulf, which will support jobs. While US backs away from threats to resume bombing Iran if it does not agree to a peace deal, Israel's political establishment is reportedly itching for war. Shimon Raklin, an anchor for the right-wing Israeli Channel 14, blurted out apparently confidential plans about a renewed attack on Tehran, which included the location of what he claimed was a uranium storage facility that could be targeted. Members of the Israeli parliament roundly criticized Ricklin's supposed revelations, leading the anchor to say his comments were purely hypothetical. This week, Israeli media reported that Netanyahu chaired the second meeting of his security cabinet to discuss renewing the conflict with Iran. Despite billions of dollars in Israeli and US ordnance thrown at Iran, the government in Tehran remains in place. Unai Emery delivered on his promise. 3.5 years ago, he walked into Villa Park and vowed he had joined Aston Villa to win trophies. On Wednesday in Istanbul, he achieved it. Skipper John McGinn lifted the Europa League after a 3-0 victory over Freiburg to etch Villa's name into the history books again. Spectacular strikes from Youri Tielemans and Emi Bonde sent them on their way with Morgan Rogers sealing victory. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
2: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र. अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतज़ार करेंगे. जब तक ईरान से कोई मुआहदा नहीं हो जाता, ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा. ज़राए के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के मसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं. रशिया और चीन ने मुश्तरका बयान में सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि अमरीकी सदर का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का मंसूबा आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है. बरतानिया ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत 6 गल्फ कंट्रीज के साथ 3.7 अरब पाउंड का तजारती मुआहदा कर लिया और ग्लोबल समूद फुलटेला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा कर दिए. इसराइली हुकाम ने तस्दीक कर दी. और अब इन खबरों की तफसील. ग्लोबल समूद फुलटेला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा कर दिए गए हैं, जिसकी तस्दीक इसराइली हुकाम की जानब से कर दी गई है. अमरीका में मुकीम फलस्तीनियों की तंजीम के मुताबिक इमदादी कारकुनों को इसराइल बदर किया जा रहा है, जबकि तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने इमदादी कारकुनों को तुर्किया मुंतकिल करने के बारे में बताया है. ख्याल रहे कि इसराइली फोर्सेस की हिरासत में फुलटेला अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफसियाती तशद्दुद किया गया है. बरतानिया ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत 6 खलीजी मुल्कों के साथ 3.7 अरब पाउंड का तजारती मुआहदा कर लिया. इस मुआहदे को बरतानवी मईशत के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है. बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर सर केर स्टार्मर ने मुआहदे को बरतानवी मईशत के लिए बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि इससे तजारत, रोज़गार और इक्तसादी तरक्की को फ़रोग मिलेगा. बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये खलीजी तावन कौंसल और किसी भी G7 मुल्क के दरमियान पहला बड़ा तजारती मुआहदा है. दूसरी जनब अमरीका ने ईरान को 25 अरब डॉलर के असासों की वापसी और 3.67% यूरियम अफसूदगी की पेशकश की है. अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतज़ार करेंगे. जब तक ईरान से कोई मुआहदा नहीं हो जाता, ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा. मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने मजीद कहा कि हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा. अमेरिका का जिन ईरानी रहनुमाओं से राबता है वो माकूल लोग हैं. अमेरिकी सदर ने एक मरतबा फिर दावा किया कि ईरान डील के लिए बेताब है. उन्होंने साथ धमकी भी दी कि अगर ईरान के साथ डील ना हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है. रशिया और चीन ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का मंसूबा आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है. दोनों मुल्कों ने अमेरिका पर जोहरी मुआहदों के तसलसल को नुकसान पहुंचाने और आलमी सलामती के तवाज़ुन को मुतासर करने का भी अल्ज़ाम आयद किया. ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के मसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं. अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियत कल ईरान का दौरा कर सकती है. अहम शख्सियत के दौरे के दौरान ऐलान किया जा सकता है कि मुआहदे का हतमी मसवदा मुकम्मल हो गया है. अरब मीडिया का मजीद कहना है कि मुज़ाकरात का अगला दौर हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में होगा. ख्याल रहे कि वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अहम दौरे पर तेहरान पहुँचे हैं. मोहसिन नकवी ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात से मुतलक ईरानी आला क़यादत से मुलाकातें भी की हैं. ग्लोबल समूद फुलटेला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा कर दिए गए हैं, जिसकी तस्दीक इसराइली हुकाम की जानब से कर दी गई है. अमरीका में मुकीम फलस्तीनियों की तंजीम के मुताबिक सामीन ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स. मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM.
0: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM. Coming up next. Health and fitness with Farhad Matin. This is Inspire FM. Inspire FM.
3: Days of Dhul Hijjah on Inspire FM. Make the most out of the 10th day, Eid al-Adha, by participating in the Eid prayer in your local mosque. Engage in takbir throughout the day. Look presentable in your best clothes and enjoy it all whilst keeping in mind that your day was possible due to the goodness of Allah. Make sure to stay tuned to Inspire FM. Assalamu alaikum.
4: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.

0: Assalamu alaikum to all our listeners and viewers. मैं आपको सबको खुश आमदीद कहता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस शो के एक नए एडिशन के साथ. मैं फहद मतीन आपका शो का होस्ट आज के, और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत आफियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के इंतहाई तक बाबरकत महीना चल रहा है ज़िलहज का, जैसे कि हम जानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और कीमती आयाम चल रहे हैं. तो हम इन आयामों में जितना ज़्यादा वक्त इबादतों में गुजार रहे हैं उतना ज़्यादा हम सब के लिए बेहतर है. और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इस वक्त एक रिलैक्सिंग वीकेंड की तरफ देख रहे हैं. जी हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और डेफिनेटली अगले हफ्ते हमारी ईद है, तो जब ईद का वक्त होता है तो ईद की वैसी तैयारियाँ हो रही होती हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि हम सब ईद की तैयारियों में भी मशगूल होंगे. और जब ईद की बात आती है तो आपको सबको पता है कि इंस्पायर ईद इंशाल्लाह इस साल भी हो रही है, तो आप ज़रूर आइएगा. ये इस साल जो है वो स्टॉकवुड पार्क में इंस्पायर ईद हो रही है, बुध और जुमरात के रोज़ नेक्स्ट वीक. सो इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर ज़रूर आइएगा, अपनी फैमिली के साथ आइएगा, इंजॉय कीजिएगा, और बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारी हमारे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. जैसे कि आप जानते हैं कि हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इंस्पायर एफएम स्टूडियो की इंस्पायर एफएम के स्टूडियो से. और आज हम शो कर रहे हैं, आज 21 तारीख है और टाइम जो है वो 6:02 हो रहे हैं. और हम अपनी पॉजिटिव वाइब्स हम सब के साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमारे तमाम लोग हमारे सामीन हमें सुन रहे हैं लूटन और उसके गिरदोनवा में, जैसे कि डंस्टेबल, हार्पटन, बेडफोर्ड, मिल्टन किंग्स. और हमारी जो पॉजिटिव एयरवेज है वो इंशाल्लाह हमारे तमाम लिसनर्स जो हमें मोबाइल ऐप के ऊपर सुन रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे सुन रहे हैं, या हमें देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स के, इंस्पायर एफएम के चैनल्स के ऊपर, हम सबको बहुत बहुत खुश आमदीद. जैसे कि हम जानते हैं कि गर्मियों के महीने शुरू हो चुके हैं, और गर्मियों के महीने शुरू होने में सबसे अच्छी बात यह होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो तकलीफ़ों की थोड़ी बहुत कमी आ जाती है. लेकिन जैसे जैसे मौसम जिस तरह तब्दील हो रहा है, अक्सर व बेशतर आपको लग रहा होगा कि आए मेरी गर्दन, मेरी कमर, मेरे घुटने, मेरे हाथ, मेरे पाँव, तमाम हड्डियों में तकलीफ़ हो रही है. जी हाँ, और सबसे ज़्यादा तकलीफ देही वक्त होता है कि जब हवा के एक झटके लगते हैं और तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ती है. तो हमने कहा इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्यों ना हम ऐसे शो करें कि जो हम सब के लिए बेहतर हो. तो इसीलिए आज का शो हम कर रहे हैं. आज के शो का टॉपिक है बोन हेल्थ, यानी हमारी हड्डियों की हेल्थ और नशोनुमा. और जो है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं आज बोन हेल्थ के ऊपर. और बोन हेल्थ के ऊपर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आपको सबको पता चले कि हड्डियों की तकलीफ़ में क्या होता है और हमें उसकी किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए. क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि यार हमारे हम कुछ खा लें पी लें, और बाज़ अवकात हमें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए एलर्जी का सामान बन जाती है. बाज़ अवकात हमें नहीं पता होता है कि जब हम समझ रहे होते हैं कि भाई हम ये चीज़ खा रहे हैं, ये चीज़ पी रहे हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, नहीं उल्टा नुकसानदेह हो जाता है. बाज़ अवकात हम ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों पे तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती है. तो बहुत सारी ऐसी वजूहत होती है. लेकिन आपको ये बात जान के बहुत बहुत खुशी होगी, मैं नहीं इसके बारे में कुछ मशवरे दे रहा. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट मौजूद हैं. आज ये हमारे साथ पहली दफ़ा शो में हमारे साथ शामिल हुई हैं, और शी इज़ नन अदर देन कंसल्टेंट फ्रॉम लूटन डंस्टेबल हॉस्पिटल, डॉक्टर नौशीन अहमद. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब.
1: अस्सलाम वालेकुम फाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का. और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम आज बात करेंगे, और काफ़ी इग्नोर टॉपिक भी है. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पर बात करने का.
0: जज़ाकअल्लाह. लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी परंपरा है, या एक कह सकते हैं ट्रेडिशन है, कि हम हमेशा अपने शो के ऊपर जो भी हमारे गेस्ट आता है हम उसको बोलते हैं कि आप अपना पहला इंट्रोडक्शन दें. तो ज़रा आप अपने बारे में बताएं कि आप ज़ाहिर सी बात है आप कंसल्टेंट हैं लूटन डस्टबल हॉस्पिटल की, इतने नाम से तो बंदा बनता नहीं है कंसल्टेंट. तो आपकी डॉक्टर की जर्नी कैसे रही, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. क्योंकि आपकी स्पेशलिटी जो है स्पेशल मेडिसिन, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो बोन हेल्थ के ऊपर है, तो ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं.
1: तो मैंने तो मेडिसिन पाकिस्तान से पढ़ी थी, हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन से. उसके बाद मैंने हाउस जॉब की थी आगा खान यूनिवर्सिटी में, and then I moved to UK. So I had a bit of career break, but then I started NHS in 2011, and I'm throughout my journey from 2011, I've been now working as a consultant in care of elderly medicine for the last 3 years. और मेरा खास इंटरेस्ट जो है वो फॉल और बोन हेल्थ पे है और मैं अपना एक वार्ड चलाती हूँ. मैं फॉल्स क्लिनिक भी रन करती हूँ मगर इसके साथ साथ मैं ऑर्थोपेडिक टीम को जो उनके पेशेंट एडमिट होते हैं फॉल और फ्रैक्चर्स के साथ उनको भी मैं असेस करती हूँ, उनकी फॉल रिस्क असेसमेंट करती हूँ और उनकी बोन हेल्थ असेसमेंट करती हूँ.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. ये एक जैसे कहते हैं ना एक बहुत यूनिक एरिया है क्योंकि आप जब इंसान जब गिरता है तो जब उठता है तो कई दफ़ा उसको खुद पता नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या क्या मसले हुए हैं उसके साथ. और ये जो है ना आपका जो एरिया है एक्सपर्टीज का वो बहुत ही यूनिक है. तो आप जिस किस्म के पेशेंट्स को देखते हैं तो उनमें क्या चीज़ इंटरेस्टिंग होती है? हर चीज़ की इंटरेस्टिंग बात तो ज़रूर होती है, तो कोई आप अपनी इंटरेस्टिंग सी बात बताएं.
1: सो क्योंकि मैं केयर ऑफ एल्डरली मेडिसिन के पेशेंट को ज़्यादा देखती हूँ जो कि 78 और अबव होते हैं और उनमें काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो फॉल कर रहे होते हैं. उनमें से कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उनके फ्यूचर रिस्क को कम कर सकते हैं. तो वो बहुत रिवॉर्डिंग होता है कि अगर हम जो उनके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम करेक्टली मतलब टाइमली मैनर में करेक्ट कर दें और इनके फ्यूचर फॉल रिस्क को कम करें. तो ये काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है. उसमें काफ़ी हम न्यू केसेस भी आइडेंटिफाई करते हैं जैसे पार्किंसन डिजीज़ कर लिया और कभी कभी हार्ट ब्लॉक्स भी कर लिए. तो अगर उनको हम मैनेज करें तो वो काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है. इन रिगार्ड्स टू फ्रैक्चर जी, तो ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इस पॉपुलेशन में. तो अगर जैसे अगर हम उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और इनके फ्यूचर यू नो फ्यूचर फ्रैक्चर रिस्क को हम कम करें तो ये काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है. सो आई रियली इन्जॉय माई वर्क एंड आई एम पैशनेट अबाउट द फॉल्स एंड द बोन हेल्थ बेसिकली.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा जहाँ तक बात आती है जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बोन हेल्थ, तो सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के जहन में आता है, लेकिन सवालों से जाने से पहले या बात करने से पहले मैं अपने लिसनर्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहता हूँ. तो लिसनर्स If you have any questions or queries regarding our topic today, अगर आपके कोई सवालात हैं या कोई आपकी अपनी experiences हैं bone health को लेके या आपके अपने मसले हैं bone health को लेके, तो please, please, please, आप हमें contact करें. आप हमें call कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं. अगर आप हमें call पे बात करना चाहते हैं तो call करें हमें 01582481822 पे. और अगर आप चाहते हैं कि हमसे WhatsApp पे बात करें या WhatsApp के ऊपर text message या WhatsApp करें तो आप हमें text message कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं 07974818822 पे. सो जब हम बात करते हैं बोन हेल्थ को लेके, तो ज़रा ये बताएं कि बोन हेल्थ है क्या और क्यों ये ज़रूरी होती है हमारे लोगों के लिए चाहे वो किसी भी उम्र का हो.
1: सो फहद, हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है तो मेनली जो हमारी स्केलेटन है वो बोन कॉम्पोजिशन पे है. और जो बोन है जैसे स्केलेटन की मुराद में की शबाहत में इस तरह दूंगी कि किसी भी बिल्डिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो स्केलेटन इज हमारी बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसी पर हमारी जो है सारा. अगर हमारी बोन हेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होगा, हमारी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा हमारा स्केलेटन. हमारा जो क्या कहते हैं मसल अटैच होते हैं बॉडी को जो हेल्प करते हैं मोबिलिटी के, उनमें भी दुश्वारी आएगी. इसके अलावा जो मेन फंक्शन अगर आप बोन का देखें ये हमारे काफ़ी वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है जैसे स्कल है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज हार्ट और लंग जैसे नाजुक ऑर्गन्स को सपोर्ट कर प्रोटेक्ट करता है किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से. सो और इसके अलावा बोन हेल्थ अगर हम देखें और बात करें तो हमारा जो बोन मैरो है वो ब्लड बनाता है. सो बोन हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू गिव द स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बॉडी बेसिकली.
0: अच्छा जहाँ तक बात होती है लोगों की, क्योंकि हम लोग जो है वो हड्डियों के बारे में ज़्यादा उस वक्त सोचते हैं जब हड्डियाँ टूट जाती हैं या हड्डियों में तकलीफ शुरू हो जाती है या फिर अगर कुछ चोट लगती है, जब चोट लगती है तो कहते हैं अरे दवाई लो जल्दी से, कोई पैरासिटामोल वगैरह पकड़ो जल्दी से, कोई आइब्रोफेन वगैरह पकड़ो. लेकिन अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझते कि यार ये शायद वीक हो रही हैं. तो बोन हेल्थ की यानी बोन वीकनेस की कोई अर्ली साइंस है जिस टाइम में पता चला कि यार हमारी बोन वीक्स हो रही है, और उसकी वजह क्या हो सकती है वीक होने की?
1: जी बहुत आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि यानी जब हम लोग गिरते हैं और बोन तोड़ते हैं तब हमें याद आता है कि ये भी कोई बॉडी का हिस्सा जिसको हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है. तो जैसे ये है कि क्योंकि मैं केयर ऑफ एल्डरली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं तो ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस देखती हूँ, जो कि अगर मैं उर्दू में अगर थोड़ी सी वजाहत करूँ, उसमें बोन्स जो हैं वो थिन हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, थोड़ी सी भुरभुरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़े से भी लो इम्पैक्ट इंजरी अगर होगी तो उनको फ्रैक्चर रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं. तो ये है कि हमें जो है टाइमली मैनर पे अपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए बोन हेल्थ के लिए. और जैसे आपने कहा है कि नहीं पता चलता जब तक कि फ्रैक्चर हो, दिस इज़ ट्रू. ऑस्टियोपोरोसिस इज़ कॉल्ड अ साइलेंट डिजीज प्रोसेस, और थोड़ी सी इसकी अर्ली अलामत आ जाती हैं, लेकिन अगर लोगों को काफ़ी विजिलेंट होना पड़ता है. तो अर्ली अलामत में क्या होता है कि लोगों की जो हाइट कम होने लगती है. अगर आप किसी से पूछें आपकी हाइट क्या थी 11-12 साल पहले, तो वो कहेंगे अब क्या हाइट है, जी मैं 2 या 4 इंच घिस गया हूँ. तो ये एक अलामत है कि जी आपकी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आपकी बैकबोन को अफेक्ट करती है और आपने लॉस ऑफ हाइट है वहाँ पर बोन का. नंबर 2 जो है उसके अलावा स्टूप पोस्चर करने लगते हैं लोग, जो है थोड़ा सा झुक के चलने लगते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं, अगर आप गौर करें तो उनकी स्पाइन में कर्व आने लगता है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में काइफोसिस कहते हैं. तो ये अर्ली अलामत हो सकती हैं, मगर जैसे मैंने कहा कि अगर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व किया तो ये कभी कभी साइलेंटली फ्रैक्चर हो चुका होता है.
0: अच्छा.
1: तो इसका मतलब है कि यानी तो इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपीनिया एक अर्ली स्टेज होती है जिसमें बोन वीक होना शुरू हुई है, लेकिन अगर हम उस स्टेज पे भी इंटरवेंशन शुरू कर दें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोग्रेस मतलब तक पहुंचने को रोक सकते हैं काफ़ी हद तक.
0: अच्छा, जहाँ तक बात आती है जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारी अनफॉर्चुनेटली जो एशियन कम्युनिटी है इस हिसाब से हम जो हैं वो ये देखते हैं कि अक्सर विश्ता जो है ना वो वाइटामिन डी का शिकार रहता ही रहता है. और जब भी किसी जीवी से बात करो, डॉक्टर से बात करो, कहते हैं यार वाइटामिन डी लेते रहो. वजह क्या है उसकी? डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में क्या उसको हमें बॉडी वीक कर देती है बोन्स को?
1: सो जो वाइटामिन डी है वो इस तरह बनता है बॉडी में कि यानी सन रेज से जो है वो स्किन में एक पिगमेंट होता है, उससे जो है वाइटामिन डी बनता है. तो हम ब्राउन लोग जो होते हैं उनमें मेलानिन ज़्यादा होता है, एक जो स्किन को ब्राउन कलरेशन देता है, उसकी वजह से वो मेलानिन जो है वो वाइटामिन डी की प्रोडक्शन को कम करता है, क्योंकि वो सनलाइट को अब्जॉर्ब होने से बचाता है. तो सनलाइट में ये है कि हम लोगों को इस वजह से भी. और फिर दूसरा, अगर हम अपनी एशियन खवातीन को देखें, कल्चरल रीज़न की वजह से हम अपने आप को कवर अप बहुत करके रखते हैं. और तीसरा, आजकल जैसे रुझान है कि जी सन ब्लॉक वगैरह हम बहुत यूज़ करते हैं, जो कि अच्छा है, प्रोटेक्टिव है स्किन के लिए, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि अगर जैसे स्पेशली जब अभी हम अप्रैल टू सितंबर के टाइम में हैं जबकि सन बाहर है ज़्यादा, हमें इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहिए और नेचुरली वाइटामिन डी बनाना चाहिए. तो रिकमेंडेशन ये है कि ड्यूरिंग अवॉइड 11 बजे से 3 बजे के दौरान का टाइम अवॉइड करें, जब सन रेज अल्ट्रावायलेट ए रेज होती हैं जो कि स्किन को ज़्यादा डैमेज करती हैं. बट बिफोर दैट टाइम और आफ्टर दैट टाइम आप लोग जो है सन को थोड़ा सा इंजॉय करें. बट इट मीन्स कि जस्ट इस आपका फेस अनकवर हो और आर्म्स अनकवर हो, नो सन ब्लॉक, एंड यू शुड allow the sun to, you know, and with the help of your skin to make a natural vitamin D.
0: yani kaun sa time bola aapne, 11 se leke 3 baje ka time
1: avoid karna chahiye, kyunki us waqt ultraviolet A rays zyada hoti hain jo ki skin ko damage karti hain. hame ultraviolet B rays chahiye hoti hain jo ki vitamin D ko synthesis mein madad karti hain.
2: तो कोशिश करना चाहिए इस टाइम को हम ज़रा अवेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी बनाएं,
0: यानी हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी धूप लें.
2: जी बिल्कुल. और आपने सही कहा कि हर एक को विटामिन डी की एक ख़ास मकदार की ज़रूरत होती है. जो नॉर्मल मकदार है वो अगर आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन अगर क्योंकि नेचुरल सोर्स तो यही है विटामिन डी, लेकिन अगर आपको और एडिशनल विटामिन डी चाहिए तो अपनी डाइट को ज़रा हेल्दी करें. तो जो अदर सोर्स हैं वो विटामिन डी के, जैसे कि ऑयली फिशेस हैं, फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं रेड मीट है, और लिवर, लिवर इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. मगर प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए लिवर को, मगर लिवर भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है. तो आपको काफ़ी ऑयली चीज़ों में, जैसे ऑयली फिशेज वगैरह, ऑयली फिश जो है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है इसका.
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. जहाँ तक बात आता है जहाँ विटामिन की बात करते हैं तो कैल्शियम की बात तो ज़रूर ही करना होगा, क्योंकि अक्सर बेशतर कहता है कि भाई कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है. तो और जब कैल्शियम की बात आती है तो कह रहे दूध पियो. तो आप हमें बताएं कि कौन से खाने बेहतरीन हैं जो कैल्शियम के सोर्सेज के लिए, जहाँ हम जिससे हम नेचुरल कैल्शियम हासिल कर सकें, ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स पे गुजारा करना पड़े, क्योंकि सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी हैं. जाहिर सी बात है अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हम दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरली बनाएं. तो उसी तरह अगर हमें बताएं कि खाने में हम क्या खाएं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम खुद ब खुद बन जाए.
2: सो खाने में जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच होते हैं, लेकिन अगर आप एक गिलास दूध पियेंगे तो ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगी.
0: अच्छा.
2: क्योंकि एक कप मिल्क में सिर्फ 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम होता है, ठीक है. और हम लोगों को एटलीस्ट, जो नॉर्मल पीपल हैं उनको 700 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कैल्शियम की, जो कि हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. लेकिन जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध है, योगर्ट है, चीज़ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अगर से कहें तो केल इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. और यस, दीज आर द मेनली थिंग. और आजकल हर चीज़ फोर्टिफाइड है, यू नो, लाइक सीरियल्स आर फोर्टिफाइड, फ्लावर इज वॉट फोर्टिफाइड, सो वी कैन टेक सम फोर्टिफाइड फूड सप्लीमेंट्स, मगर दीज आर यूजली द फूड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम.
0: सही सही. तो इसका मतलब है फिर हमें क्या एक से ज़्यादा ग्लास दूध के पीने चाहिए मिनिमम?
2: मिनिमम या मगर इसकी भी डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ मिल्क क्या है,
0: यानी रेड मिल्क ना किए ब्लू पेज गुजारा कर.
2: नहीं, ये है कि जो स्किम्ड मिल्क है इट्स स्लाइटली रिचर इन कैल्शियम कंटेंट एज कंपेयर टू फुल फैट मीट.
0: ओह,
2: फुल फैट मिल्क, सॉरी.
0: वाह, ओके. मुझे नहीं पता था, मैं समझ रहा था कि यार ब्लू मिल्क जो होता है हमारे, वो जो बाड़े के दूध होते हैं, यहाँ पे तो बाड़े के दूध नहीं होते, लेकिन वो जो ब्लू मिल्क होता है उसमें ज्यादा
2: स्किम्ड मिल्क.
0: वाह, ओके. ये मेरे लिए वाकई एक जबरदस्त नॉलेज है, और उसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि लिसनर्स, मुझे आप लोग का भी फीडबैक चाहिए. आप कैसे समझ रहे हैं शो कैसा चल रहा है, ज़रा फीडबैक दें, ज़रा हमें बताएं. अगर आपके साथ बोन हेल्थ की कोई प्रॉब्लम रही है या आपका कोई अपना एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज़ शेयर विद अस. प्लीज़ गिव अस अ कॉल ऑन 01582481822, या आप हमें अपना सवाल टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. कोई राय, कोई परेशानी ज़रूर बताएं. अच्छा डॉक्टर शी, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ हम कैल्शियम की बात करते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो सनलाइट को अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार इससे मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मेरी स्किन ड्राई हो जाती है जब मैं ज़्यादा धूप में होता हूँ. तो और वो इसी चक्कर में वो घर के अंदर रहते हैं. ज़्यादातर हम बात कर रहे होते हैं बच्चों को लेके, या वो कहते रहते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं यार बच्चे अब बाहर नहीं जाए, क्योंकि हमारे ज़माने में तो बोलता था जाओ बाहर जाओ जाके खेलो. आज के ज़माने में तो बच्चे सारे अपने गैजेट्स लेके बैठे हुए होते हैं. तो आप ज़रा बताएं कि बोन हेल्थ उस पर क्या इफ़ेक्ट होती है घर के अंदर रहने ज़्यादा, और साथ में जो जो जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं, क्या वो उसकी वजह से अपनी जो उनकी हड्डियां हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं, ताकि वो फिर ओल्ड एज में उनको प्रॉब्लम हो?
2: सो फहद, जो बोन ज़्यादा मास डिवेलप होता है वो इसी चाइल्डहुड और यंग एज में होता है, तो बोन मास की जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी पीक पे जाती है वो 30 इयर्स की एज तक जाती है. तो ये काफ़ी क्रिटिकल टाइम है कि इस वक्त आपको अपने बच्चों को विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर ग़ज़ाएँ देनी चाहिए. आपने सही फरमाया कि आजकल टाइम चेंज हो गया है कि बच्चे ज़्यादा वक्त घर में गुजारते हैं, मगर हमें उनको इनक्रेज करना चाहिए कि बाहर धूप में भी खेलें. लेकिन जैसे मैंने कहा है कि यानी सुबह 11 बजे से 3 बजे का टाइम अवॉइड करें. वैसे भी वो स्कूलों में होंगे उस वक्त, लेकिन जैसे इवन अगर हॉलीडेज और वीकेंड्स भी हैं तो वो टाइम अवॉइड करें. बट बिफोर दैट और आफ्टर 3 o'clock इट्स अ गुड टाइम के दे शुड गो आउट एंड इन्जॉय सम सनलाइट. इवन 10 minutes इन यू नो इन द सन ड्यूरिंग दैट टाइम इज़ इनफ फॉर मेकिंग यू नो रिक्वायर्ड डेली अमाउंट ऑफ विटामिन डी.

0: लिविंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी है. जैसे कहते हैं अगर आप ब्रेन एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेगी, याददाश्त स्ट्रांग रहेगी आप जितना यूज़ करेंगे ब्रेन. इसी तरह कहते हैं जी कार्डियो एक्सरसाइज करें तो आपका हार्ट स्ट्रांग होगा. इसी तरह बोन्स जिस तरह स्ट्रांग होती हैं वो एक्सरसाइज से स्ट्रांग होती हैं, और हमें एक्सरसाइज को ज़रूर करना चाहिए. यहाँ पे डिफरेंट इम्पैक्ट की एक्सरसाइजेज होती हैं कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं, मॉडरेट और हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं, और उसको हर एक को अपनी इस्तेतात और यू नो क्या कहते हैं कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए. क्योंकि ये आप जितना बोन पे वज़न डालेंगे इस तरह की कहना चाहिए कि मसल स्ट्रेन यानी क्या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, वो दोनों हेल्प करती हैं बोन को. तो उसमें डिफरेंट है, जैसे लो इम्पैक्ट है सिंपल वॉकिंग, अगर कोई ज़्यादा अच्छा तेज़ भाग सक तेज़ वर्क कर सकता है तो ब्रिस्क वॉकिंग कर ले. क्लाइंबिंग द स्टेयर इज आल्सो अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज.
1: अच्छा
0: जी. तो अगर
1: जैसे घर की सीढ़ियां ऊपर नीचे करते रहो,
0: बिल्कुल. और इवन जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं या जो ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते वो ये सिर्फ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस कर लें. अगर हम मॉडरेट इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस की बात करें तो उसमें जैसे रनिंग है, क्या कहते हैं जॉगिंग है, ये सब चीज़ें हैं, स्किपिंग वगैरह, ये मॉडरेट है. और हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस में जैसे वो तो फिर आपके जैसे आपके रैकेट प्लेयर्स गेम हैं बेसिकली टेनिस स्क्वाश दोस टाइप ऑफ थिंग, लेकिन जैसे स्टार जंपिंग इज़ आल्सो हाई इम्पैक्ट. सो जितना आप जोर डालेंगे अपने मसल्स और बोन्स पे, बोन उसी तरह रिमॉडल होती हैं और स्ट्रॉन्ग बोन से बढ़ती हैं. कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए ये हर एक की अपनी इस्तेतात के मुताबिक है, लेकिन जैसे जैसे हेल्दी रिक्वायरमेंट यही है कि 20 to 30 minutes यूजली 5 days a week. इतना हमें अगर इतनी एक्सरसाइज हम ऐड कर लें अपनी डेली रूटीन में तो ये भी बोन के लिए बहुत मतलब मुफीद होगी.
1: राइट ओके. सो ओह सो इन टर्म्स ऑफ जब हम बात कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हम एक्सरसाइज की सारी बात कर रहे होते हैं तो हम लोग इसको ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जो कि हमें बोन को जो है ना मजबूत करें. मजबूत करने की कोई खास एक्सरसाइज होती है कि जनरल एक्सरसाइज से काम करें?
0: जनरल एक्सरसाइजेस हाँ, लेकिन जैसे अगर कोई वेट लिफ्टिंग करना चाहे तो वेट लिफ्टिंग इज़ वेरी गुड. जैसे मैंने आपको बताया है लो इम्पैक्ट है, मॉडरेट इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस में जैसे वेट लिफ्टिंग है और बैंड ट्रेनिंग है. लेकिन जाहिर है मैं जैसे एल्डरली मेडिसिन में काम करती हूँ, मेरे पेशेंट इतने फिट नहीं होते कि जी वो जाके बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करें. लेकिन यानी अगर जो ये जिनको जितना उठा सकते हैं वेट, वेट इज़ वेरी गुड फॉर द मसल और बोन स्ट्रेंथनिंग बेसिकली. जिन लोगों को बैलेंस इश्यू हो और वो ज़्यादा इस तरह की एक्सरसाइजेस ना कर पाएँ तो उनको सिर्फ बैलेंस एक्सरसाइजेस से भी स्टार्ट करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बिल्डअप करना चाहिए. तो कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंटेंसिटी. तो जैसे थोड़ी लो इम्पैक्ट से शुरू करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएँ.
1: And on that note, I must say, wow, the time has passed really quickly. We are going for a very short break. So when we come back from break, inshallah, we will talk more about this, inshallah. So stay tuned. We will be right after these short messages.
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salatul Asr.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-asr ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: Leegrave Road, Luton.
1: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट यूके ऑफिस 03001234@court.org.uk।
3: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Flip the page, hum a tune, study morning, night and noon. Beat the stress, keep your cool, learning smart is the golden rule. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
5: Last time on Akhri Mojza.
6: तो जब अल्लाह ताला की बहुत शदीद मोहब्बत होती है ना, तो उस वक्त आपको रहमान का लफ्ज मिलेगा। बहुत शदीद रहमत, आपको तदब्बुर करना पड़ेगा कि यह कौन सी शदीद मोहब्बत है। इसीलिए फिर आपको सूरत रहमान समझ में आएगी। और रहमान अल्लाम अल-कुरान, जिसने इतनी शदीद मोहब्बत की, इतना मुकम्मल ख्याल किया कि उसने उस मुकम्मल ख्याल और शदीद मोहब्बत के नाते कुरान सिखाया, इसलिए कुरान सिखाया। हमने क्या बना दिया कुरान को, और कुरान किस लिए सिखाया गया था, किस मोहब्बत से सिखाया गया था, क्या लिहाज करके हमारा सिखाया गया था, हमने क्या बना दिया कुरान को। सुभान अल्लाह।

तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बारे में। अच्छा, लेकिन एक कन्फ्यूजन भी आ गई, वो भी समझ लें। रब में सरबराही के, सरदारी के मायने थे कि नहीं थे ना? मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना, तो आपकी दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है कोई एक एक चीज चेक कर रहा था, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहे हैं। एक मैनेजर होता है कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं जुम्मे को चेक कर लूँगा, खुली छुट्टी, पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहो मैं घर से काम कर लूँ, काम कर लो, जहाँ से भी करो, दरख्त से लटक के कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम काम कर लो, जुम्मे को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बॉस होते हैं कि नहीं? एक होते हैं जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, और दूसरा खुली आज़ादी दे के बस मुझे रिजल्ट्स दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक्तदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है वो किसी भी लम्हे पूछ लें। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की? नमाज़ पढ़नी है, पाँच वक्त पढ़ना, नहीं पढ़नी सोते रहो, वैसे पढ़नी चाहिए, मैं उठाऊँगा नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी ज़बान पे, बोलना बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारा है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी, ऐसा ही है ना। उसकी मैं आपको इंसानी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब ग़ुलामी नहीं रही उस तरह की, लेकिन मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, आप फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आए, कहते हैं आज के बाद आप मेरे ग़ुलाम हैं, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ग़ुलामी कबूल कर लीजिए आपकी,

0: क्या करूं जी आपके गुलाम होने के नाते, बस ये एक मैंने एक दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर रहना, बस बाकी कुछ नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। कहा जी ये तो बड़ा आसान काम है, अब मैं दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और आप मुझे दूर से देख रहे हो। एक दिन मैं ज़रा फिसल के गिर गया दायरे के उस तरफ, जब मैं दायरे के उस तरफ गिरा मेरी नज़र फौरन कहाँ गई, मालिक की तरफ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से बस कोने पे फिसल गया था, अब नहीं होगा अमल, मैं कुछ भी नहीं कहा, ऐसे बस एक लफ्ज़ नहीं कहा मैंने। मेरे जहन में आया माशाल्लाह बॉस तो वैसे काफ़ी हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, इतनी को सज़ा भी नहीं मिली। तो दो तीन दिन बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं ज़रा एक और दफ़ा गलती से करके देखूं क्या होता है। तो मैं गिरा, फौरन मैंने देखा जो मेरे मालिक हैं वो बैठे हैं चेयर पे, उठे भी नहीं चेयर से, और फिर मैं कहूँ सॉरी सॉरी, वो कहते अच्छा जी ये तो इतना कोई सीरियस नहीं है जितना मैं पहले समझ रहा था, मैं पहले बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस कानून को तोड़ूंगा तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ना, कोई साथ में इसके बारे में मुआवजा होगा, कोई सवाल जवाब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पाँव उधर एक पाँव इधर, एक पाँव उधर एक पाँव इधर, और फिर मैं बॉस को भी, वो भी मुझे ऐसे, और फिर कुछ अर्से बाद में दोनों पैर इस तरफ और घूम फिर रहा, और बॉस से भी, बॉस कह रहे लंच तैयार है, यानी ताल्लुकात में कोई वो अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी ख्याल रखे हुए है, और मैं लाइन के बाहर हूँ लेकिन कुछ नहीं कहा। अच्छा मैं 5-6 साल इस तरह गुजार दिए इसी तरह से। इस दौरान मेरे साथ वो कुछ ज़्यादा रियायत नहीं कर रहा। अब वो जो ज़्यादा रियायत करता है ना कोई बॉस, तो उससे एम्प्लॉयज़ का क्या होता है पता है? ओए होए होए, मेरी एक बहुत पुराने ज़माने में मेरी एक जॉब थी, मैं प्री स्कूल टीचर था, किंडरगार्टन एंड प्री स्कूल, और फिर मुझे वहाँ से जब मैं फारिग हुआ तो मुझे एक जॉब मिली, मैं तीसरी जमात को मैथ पढ़ाता था, मैथमेटिक्स। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था सारी टीचर्स जो थीं वो सीनियर थीं, और बहुत ही, यानी बच्चे देख के उनको, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दादी याद आ जाए, दादी तो नाइस होती हैं, दादी नानी, उनको देख के क़यामत याद आ जाती थी। मैं गया क्लास में, मैंने कहा मैंने इन बच्चों से दोस्ती करनी है, इन बच्चों को मैंने डराना नहीं है। मैं गया, मैं लतीफ़े सुना रहा हूँ, मैं टेबल पे खड़ा हो के ट्रिक्स कर रहा हूँ, अपने यहाँ पे पेंसिल घुसा के यहाँ से निकाल रहा हूँ कुछ कर, वो तालियाँ बजा रहे हैं, सर्कस बना हुआ है क्लास के अंदर। मैंने कहा ये बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे एक दो दिन बाद जब मैं कहूँगा मैथ शुरू करो, दिल खोल के पढ़ेंगे। तो मैं समझा ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, मैं इतनी मोहब्बत से इनसे डील कर रहा हूँ, खुली आज़ादी दी हुई है। तीसरे दिन मैंने कहा चलो भाई बच्चो ओपन अप पेज 5, क्या हुआ पता है? एक मुझे कहता है नो, दूसरा एक दूसरे से कहता है डू द पेंसिल, वो पेंसिल वाली चीज करे दोबारा। मैंने कहा नहीं ओपन पेज 5, और मुझे अभी तक याद है एक बच्चा वो दीवार पीछे क्लास की दीवार पे गया, वहां पे वो यहां खड़ा अपना नाम लिख रहा है दीवार पे, और वो लिख रहा है और मुझे देख रहा है, और उसका दोस्त उससे कह रहा है यार टीचर तुझे देख रहा है, तो कहता है हां लेकिन ये अच्छे हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ रहमत की जा रही है, आपका बहुत ख्याल, बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है आपके साथ, और उस पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, आप नाफरमानी करें या फरमा बरदारी करें आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है, तो उसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो नाइस ही नाइस है, ये तो है ही अच्छे नरम दिल के हैं। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपना रब जो तुझसे इतना तुझ पर कर्म करता है, किस चीज ने तुझे धोखा दे दिया? क्या उसके करण ने तो तुझे धोखा नहीं दे दिया? धोखे में तो नहीं पड़ गया? तो जब कहा ना अर रहमान अर रहीम, तो ये खतरनाक बात कह दी। रब तो वो है, रब में तो अथॉरिटी आ गई ना, इक्तदार आ गया, और उसके बाद फौरन तसली दे दी। किस किस अल्फाज, किन अल्फाज से? अर रहमान अर रहीम। अब कोई अल्लाह ताला की हदूद से बाहर जाके उसने एक लिकर स्टोर खोल लिया, उसने कोई और हराम बिजनेस शुरू कर दिया और हरकतें शुरू कर दी, और उसको तुम कोई, ये अल्लाह की हदूद से बाहर है यार, वापस आ जाओ हदूद के अंदर। यार तुझे नहीं पता, एक लेक्चर मैंने सुना था, अर रहमान अर रहीम, पता है कितनी चीज़ें, तीन चीज़ें होती हैं अर रहमान के अंदर और दो होती हैं अर रहीम के अंदर। छुट्टी है ना, अर रहमान अर रहीम में तो फिर बिगाड़ का सारा सामान, इन दो अल्फाज में जितनी रहमत है उतना ही बिगाड़ का सामान भी है। लेकिन फातिहा में जो बुनियादी रिश्ता है ना मेरा अल्लाह ताला के साथ, उसको सही यानी मीज़ान पर कायम किया गया है। तो फौरन अर रहमान अर रहीम के बाद क्या बात की, मालिक यौमिद्दीन, फौरन सीधा हो गया बंदा। मैंने कहा था ना, मैं अपने मालिक से फेंस के बाहर में 5 साल इसी तरह छुट्टी गुजारी, 5 साल बाद मालिक मुझे बुलाता है, कहता है ये जो तुम बाहर खड़े हुए हो ना, हाँ मुझे पता है, वो एक दफ़ा मैं आपने कहा था, लेकिन याद है मुझे वो भी क्या दिन थे। कहते मैंने वैसे उस दिन से रिकॉर्ड रखा हुआ है कि तुम कितनी दफ़ा बाहर गए थे, ये रिकॉर्ड है तुम्हारा, और आज तुम्हें उस सब की इकट्ठी सज़ा मिलेगी। अब बात समझ में आ रही है मालिक यौमिद्दीन क्या होता है? इंसान समझता है कि उसकी खुली छुट्टी है, लेकिन बाद में आगे जाके फौरन पकड़ हो रही है ना। अब ये एक अजीब अजीब सूरत है अल्लाह ताला की। इसके बारे में मैं जितना काम कम है आज सेशन होने ख़त्म होने से पहले दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा, मालिक यौमिद्दीन के बारे में और अभी जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में। दो लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं इस सूरत में, एक रब और एक मालिक, है ना, एक रब और एक मालिक, और उन दोनों के दरमियान दो अल्फाज हैं, एक तरफ रब है एक तरफ मालिक है, और दरमियान में दो कौन से लफ्ज़ हैं, अर रहमान अर रहीम। अब उन दोनों लफ्ज़ के बारे में सोचें, उनमें से एक
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: کل کے سیشن کے آخر میں دو باتیں میرے ذہن میں تھیں جو رہ گئیں، وہ میں پہلے ذکر کر دوں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کے بارے میں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن میرے خیال سے آپ لوگ کافی اسمارٹ ہو، آپ سمجھ جاؤ گے. ٹھیک ہے، رب کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس میں پانچ معنی ہیں. کسی کو یاد ہے کیا تھے؟ مالک، سید، منعم، مربی، قیم. اچھا، پانچ میں سے نا اس کو ہم تھوڑی تقسیم کر دیتے ہیں. ان میں سے دو کا تعلق اتھارٹی کے ساتھ ہے، باقی تین کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے. پانچ معنی ہیں لیکن دو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اتھارٹی کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ. وہ دو کون سے ہیں؟ آپ خود گیس کرو. مالک اور سعید کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے، لیکن جس نے خیال رکھنا ہے، جس نے تحفہ دینا ہے، جس نے نشو نما کرنی ہے، مربی، منعم، قیم، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے. اب آگے جا کر مالک کا لفظ آیا تھا، مالک یوم الدین، اور مالک کی دو قراءات تھیں، یاد ہے آپ کو؟ مالک اور ملک. اس میں سے ایک مالک تو ویسے بھی رب کے ساتھ تھا، اور ملک اتھارٹی کے یا جو سید کے قریب ہے. ملک اور سید، سمجھ رہے بات؟ یعنی رب میں پانچ معنی ہیں، لیکن اس میں سے دو معنی مالک اور ملک میں بھی ہیں، لیکن تین مسنگ ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون سے تین مسنگ ہیں جو رب میں ہیں، جو مالک میں اور ملک میں نہیں ہیں؟ منعم، مربی، قیم. تو وہ تین مسنگ کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تین مزید کیوں ہیں اور وہاں تین کم کیوں ہیں؟ وہاں بات ہو رہی ہے انصاف کی. کس دن کا مالک ہے؟ مالکی یوم الدین. یہاں بات ہو رہی ہے تمام عالمین کی، رب العالمین. وہ آخرت کی بات ہے، آخرت کے کورٹ والے دن کی بات ہے، اور یہاں پر دنیا کی بات ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی ہے، لیکن وہ ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ہے، ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. مجھے امپریشن ملتا ہے میرا بھی کوئی کنٹرول ہے، میرے منہ میں جو بات آئے میں کہہ سکتا ہوں، وہ روکتا نہیں ہے. روک سکتا ہے؟ روکتا نہیں ہے. میں جو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، وہ میری آنکھوں کو بند نہیں کرتا. ہے تو وہ مالک، ہے سید، لیکن اس کو وہ ایکسرسائز کرنے سے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو مجھے کنٹرول کر رہا ہے. اور وہ کیوں نہیں کر رہا فوراً؟ پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ منعم، مربی، قیم، الرحمن، ان ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی آزادی دی ہوئی ہے. قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مہتعین رؤوسہم، یہاں تک کہ مجرموں کے بارے میں اللہ ہمیں مجرموں سے میں سے نہ بنائے. سورۃ القمر میں بتایا ہے کہ وہ ان کو پکارا جائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو بہت ڈرونی ہوگی. الا شیء النکر، یوم یدعو الداعی الا شیء النکر، ایسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے جو بہت ڈرونی ہے. اچھا، اگر میں کہیں آگ دیکھوں اور وہ قریب ہے، کوئی جانور دیکھے، کوئی انسان دیکھے، کس طرف بھاگے گا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون اور پوری پوری سوسائٹیز ہونے کے باوجود وہ ان کا مربی اور ان کا منعم اور ان کا قیم. اچھا، سوسائٹی کا جو لاء ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی قرآن میں ایک لفظ ہے. پوری ایک جو اس کا آئین ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ قرآن استعمال کرتا ہے دین. جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا ایک سازش کے تحت، یعنی ان پر الزام لگایا کہ کپ ان کے بیگ میں سے نکلا، ان کے بستے میں سے نکلا. تو کہا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا ایسا کیوں کیا انہوں نے. اس لیے کیا، ما کان ان یاخذ اخاه فی دین الملک. ان کے لیے ممکن نہیں تھا اپنے بادشاہ کے قانون کے تحت کہ وہ ایسے ہی اپنے بھائی کو رکھ لیتے. اریسٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو جو بادشاہ کا قانون تھا نا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا سورہ یوسف میں؟ دین. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب عالمین کی بات کی گئی ہے نا، تو تمام عالم، تمام سوسائٹیز، تمام سولیزیشنز، ان تمام کے دین الگ الگ تھے، ان کے قانون الگ الگ تھے، لیکن اللہ پھر بھی ان کا رب رہا. फिर भी उन पे रिमते करता रहा। लेकिन एक दिन आ रहा है जब वो, आप किसी भी कानून से आए हो, किसी भी आइन से आए हो, एक दिन सबको एक ही कानून के तहत जज किया जाना है। वो क्या है? मालिक यौमी अद्दीन। अब सख्ती हो गई। जब सख्ती हो गई तो नरमी वाले तीन मायने निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर रब और वहां पर मालिक की बात समझ में आ गई। तो ये चीज, ये भी बारीक सा तनासुब है कि रब के साथ अलआलमीन और मालिक के साथ यौमिद्दीन, सुभानअल्लाह। अच्छा, अब आके मैंने आखिरी बात आपसे रात की थी और कल की थी दोपहर को, कि अब इन तमाम बातों का जो अल्लाह ताला ने इन तीन आयात में कही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानुर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अब इसका एक नतीजा निकलना चाहिए। और कुरान इस पहली सूरत में ना सिर्फ अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहा है, इन तीन आयात में तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करा दिया, लेकिन इस पूरे कुरान का जो मकसद है ना, उससे भी हमारा तारुफ हो रहा है। कुरान की हर सूरत में बहुत ज़्यादा हिदायत हैं, लेकिन फातिहा में पूरे कुरान की हिदायत का खुलासा है। और उस खुलासे में से एक अहम बात यह है कि इंसान को खुद फैसला करना है कि वो अल्लाह ताला का बंदा बने, यानी शौरी तौर पे, और ख़ुद मुख्तार होके खुद ये फैसला करे। उस पे ये फैसला किसी की तरफ से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ला इकराह फित्तीन, दीन के मामले में आप किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जबर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। आप जितना भी बच्चे को फ़र्ज करें तरबियत कर लो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, एक अभी उस पर नमाज वाजिब नहीं है, उसकी उम्र नहीं हुई, एक दफ़ा उसकी उम्र हो जाए और फिर वो आपके डांटने डपटने से नमाज पढ़े, तो उसकी नीयत क्या थी? नीयत करता हूँ चार रकत नमाज अम्मी की वजह से, अल्लाह अकबर, यही नीयत थी ना? हमारे दिन ने क्या सिखाया? अमाल की बुनियाद, अमाल का दारोमदार किस चीज़ पर है? अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो तो उसकी नीयत अल्लाह की थोड़ी रही, नीयत तो आप थे ना, नीयत तो किसी का प्रेशर था। तो शुरू से ही अल्लाह ताला ने क्या कहा है, यहाँ तक कि अल्लाह, क्योंकि वो रब है, वो फोर्स कर सकता है, वो ज़बरदस्ती भी करा सकता है। पुलिस वाला आपसे गाड़ी रोड पे ज़बरदस्ती करा सकता है, आपको कहता है कि रुक जाओ तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको इशारा करेगा रुको गाड़ी, आपको रुकनी पड़ेगी, स्लो करने को कहेगा स्लो करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला भी इसी तरह आपको रुकवा सकता है, और अगर नहीं रुकोगे तो उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका कोई ना कोई नतीजा उसी वक्त आपको उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में, इस दुनिया के निज़ाम में एक आज़ादी दी है, और उस आज़ादी से इंसान खुद अपनी आज़ादी से कहे इय्याका नअबुदु, इसीलिए कहा उबुदु नहीं कहा, उबुदु कहा होता अच्छा आप इबादत करो, वो हुक्म होता अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इय्याका नअबुदु। अल्लाह ताला ने अब हमारे अल्फाज को कुरान का हिस्सा बना दिया, हम तेरी इबादत करते हैं। ये भी एक अजीब बात हुई, पहले अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इस आयत में अल्लाह ताला की तरफ से आयत तो है, लेकिन अल्फाज किसके हुए? अगर हम कहें हम तेरी ही इबादत करते हैं तो किसके अल्फाज हुए? हमारे अल्फाज हुए। कुरान का एक बुनियादी मकसद क्या है? अल्लाह ताला और हमारे दरमियान एक बात हो रही है, एक मुकालमा हो रहा है, और अब हमें उस मुकालमे की शुरुआत हो गई है। अल्लाह ताला कुछ कहते हैं फिर हम कुछ कहते हैं, अल्लाह ताला कुछ कहते हैं फिर हम कुछ कहते हैं। जिस तरह आप किसी की बात सुनते हो और आप बात सुनने के बाद आपका रद्द अमल होता है ना, फिर आप उसका जवाब देते हो, आपके जहन में कोई बात आती है तो आप कहते हो, अल्लाह ताला अब हमें सिखा रहे हैं जब अल्लाह ताला कोई बात करते हैं तो आपके जहन में, आपके दिल में कोई बात आनी चाहिए और वो आपके मुँह से निकलेगी। तो जो बात नेचुरली मुँह से निकलेगी इस फातिहा के अंदर, वो क्या है? इय्याका नअबुदु। अच्छा, तो ये पहली बात तो मैंने बता दी, जिस नतीजे पर इंसान खुद पहुंचे। यहाँ पर भी एक और, क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा, ज़्यादा फिर बोरिंग हो जाएगी। मैं जब इस्लाम के बारे में सोच रहा था कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ थे नहीं उस वक्त न्यूयॉर्क में, कॉलेज में मैं कुछ ज़्यादा ही आज़ादी थी, तो सोचने का मौका मिला कि अगर मुसलमान हूँ भी तो क्यों हूँ, क्या इसलिए हूँ कि मेरे पेरेंट्स वालदैन मुसलमान हैं, तो मेरा जो दोस्त हिंदू है उसके वालदैन हिंदू हैं तो उस वजह से वो हिंदू है, तो वो तो कोई ईसाई फैमिली से आया हो तो वो ईसाई होगा, कोई यहूदी हो तो वो यहूदी होगा, मेरी फैमिली मुसलमान है, पाकिस्तान से हैं तो मैं मुसलमान हूँ, इसका इस्लाम के हक होने से तो कोई ताल्लुक नहीं हुआ। फिर दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ताला को नहीं मानते ना, एक तो है कि मुख्तलिफ खुदाओं को मानते हैं, शिर्क करते हैं, फिर एक इल्हाद है। इल्हाद क्या है कि मैं एथीस्ट हूँ, मैं किसी खुदा को नहीं मानता। जो एथीस्ट होते हैं ना उनकी एक कॉमन उनमें एक मुश्तरक सोच ये होती है कि अगर वाकई कोई खुदा होता तो इतनी नाइंसाफ़ी कैसे होती। तुम कहते हो ये खुदा बड़ी मोहब्बत करता है, उसको अर्रहमान कहते हो, तो ये जो बच्चा कैंसर की वजह से मर गया, ये जो माँ मर गई कार एक्सीडेंट में, उसका बच्चा भी रो रहा है, ये कैसा अर्रहमान है, इसको रहमत कहते हैं? इस किस्म के खुदा को मानते हो तुम? और तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि इसके अंदर इस खुदा के अंदर रहमत नहीं है, तुम कहते हो रहमत है, मुझे तो रहमत नज़र नहीं आ रही, उसकी हज़ारों मिसालें देते हैं। उसके बाद वो एक और बात भी करते हैं, वो कहते हैं तुम कहते हो कि इस खुदा ये जो है ये अदल का मालिक है, ये अदल करता है, मुझे तो कहीं अदल नज़र नहीं आता। जो लोग बिजनेस में चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वतें देते हैं, करप्शन करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, जो दयादारी से काम करता है, झूठ नहीं बोलता, रिश्वत नहीं करता, मिलावट नहीं करता, वो कहा क्या होता है उसके साथ, वो पीछे रह जाता है। जो अपने PhD पेपर में कहीं और से कॉपी करके इधर उधर से करके सबमिट कर देता है, उसको पेपर मिल जाता है, उसको डिग्री मिल जाती है। जो ओरिजिनल काम करता है वो पीछे रह जाता है, जिसको जिसके पास सिफारिश होती है वो आगे निकल जाता है, जिसके पास सिफारिश नहीं होती वो पीछे रह जाता है। तो यहाँ तो नाइंसाफ़ी की जीत होती है ज़्यादातर। तुम जितना भी कहते रहो कि ये अगर खुदा वाकई इतना इंसाफ करता है, तो उसकी एक आम सी मिसाल है, अगर एक इंसान जानबूझकर गलत वजह से एक दूसरे इंसान का कत्ल करे तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? उसने जान ली है तो क्या होना चाहिए उसके साथ? उसकी भी जान लो। लेकिन अगर एक इंसान 100 लोगों का कत्ल कर दे, मुमकिन है कि नहीं? एक इंसान 100 लोगों का कत्ल करे, क्या सजा दोगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दफ़ा कत्ल करोगे ना। एक दफ़ा कत्ल करने के बाद उसके बाद आप क्या कर सकते हो? जाने उसने 100 ली, लेकिन आप तो उसको एक ही दफ़ा सज़ा दे सकते हो ना, तो ये इंसाफ थोड़ी हुआ। तो दो बड़े बड़े जो इश्काल, दो बड़ी शिकायतें आती हैं खुदा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ। वो एक है कि ये तुम कहते हो कि ये रहमान है, इसमें रहमत कहाँ है, मुझे तो नहीं नज़र आती। और तुम कहते हो कि ये आदल है, ये इंसाफ करता है, मुझे तो इंसाफ नज़र नहीं आता। फिर इसके साथ एक और मसला खड़ा होता है कि अगर कोई भी एक रब को मान ले, एक इलाह को मान ले, जो हर मामले में उसमें कोई कोताही नहीं है, उसके इल्म में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसकी हिकमत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसकी मोहब्बत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके अदल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि अगर एक भी कमी किसी भी चीज़ में हो जाए ना, तो वो खुदा नहीं हो सकता। बात वाजे है ना, क्योंकि अगर कमी हुई तो खुदा कैसा हुआ फिर, राइट? फातिहा में इस बात का जवाब है। फातिहा में अल्लाह ताला ने हमारे और अल्लाह के रिश्ते की बुनियाद अर्रहमान रखी, अलादल रखी, पहले अपना नाम बताया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बताया तमाम चीज़ें अल्लाह के बारे में सीखने के लिए पहली चीज़ क्या सीखनी पड़ेगी। पहला यानी पहला वस्फ अल्लाह का, पहली सिफत क्या थी फातिहा में? रब। रब यानी इस तमाम रिश्ते की बुनियाद, मेरी तमाम जिंदगी की बुनियाद, इंसानियत की कहानी की बुनियाद एक लफ्ज़ है मेरे और अल्लाह के दरमियान, वो क्या है? अल्लाह मेरा रब है। अब जब वो अपने आप को अर्रहमान कहता है ना, तो वो रब होने के दायरे के अंदर रहमत कर रहा है। और जब वो दी मालिक यौमिद्दीन होगा, तो वो रब के नाते वो फैसला करेगा उस दिन। यानी इस असल रिश्ता मेरा उसके साथ किस चीज़ का है? मैं अब्द हूँ और वो रब है। अच्छा, इस रब ने क्या किया? उसने एक फैसला किया कि जो मेरी रहमत है ना, वो दो तरह की है, एक जाहिर और एक बातिन। एक रहमत मैं दिखाऊंगा और एक रहमत मैं छुपाए रखूंगा, ये उसका फैसला है। अब क्योंकि वो रब है, उसकी पूरी अथॉरिटी, उसने ये फैसला कर दिया। अब उस फैसले के पीछे उसकी क्या हिकमत थी, क्या तुक थी? अगर वो मुझे सेंस समझा दे कि आपने क्यों किया कि कुछ रहमतें जाहिर हैं और कुछ रहमतें बातिन हैं, आप कहो कि किसी की बीमारी हुई है तो वो तो अजाब में है, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई छुपी हुई क्या है, रहमत है। वो मुझे नज़र नहीं आ रही, अब मुझे नज़र नहीं आ रही तो मैं खुदा से कहूँ ज़रा मुझे भी दिखाएं ज़रा क्या रहमत थी इसके अंदर, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप पहली बात भूल गए, क्या है वो आपके लिए? रब। और रब के होने के नाते उसको कोई प्रेशर नहीं है कि वो आपको समझाए कि मैंने ये फैसला क्यों किया। देखें, अगर जज या पुलिस वाला आपको रोकता है ना, तो आपको क्यों रोका मुझे, पता नहीं है मैं काम पे जा रहा हूँ, समझाओ ज़रा क्यों रोका मुझे। आप क्यों इस तरह बात नहीं करते जज के साथ, टीचर के साथ, पुलिस वाले के साथ? क्योंकि क्या होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, तो आप उसकी अथॉरिटी के अंदर सरेंडर हो जाते हो, राइट? अल्लाह ताला के पास एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के तहत उसने कहा है कुछ रहमतें तुम्हें नज़र आएंगी, समझ में आ जाएंगी, कुछ रहमतें समझ नहीं आएंगी, लेकिन है रहमत फिर भी। सूरतुल कहफ में इसकी तरफ इशारा किया गया है, वो तीन वाक़ियात जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुए हैं सूरतुल कहफ में, वहाँ भी यही तो बात की गई है ना, रहमतन मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अमरी। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से एक रहमत थी। मूसा अलैहिस्सलाम को वो जब तीन वाक़ियात हुए उनको रहमत नज़र आई कि नहीं? वह तो नज़र नहीं आई। बाद में समझाया गया ये क्या था, ये रहमत थी किसकी तरफ से, मिन रब्बिक। तो ये रहमत और रब का ताल्लुक समझ में जब तक नहीं आएगा ना, तब तक इंसान पूछता रहेगा तुम तो कहते हो और रहमान है, मुझे तो रहमत नज़र नहीं आ रही। असल में तुम रब को नहीं समझे ना, इसलिए तुम्हें रहमत नज़र नहीं आ रही, असल बात यह है। दूसरी बात यह है कि वाकई इस दुनिया में नाइंसाफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे काम करने वाले लोग अच्छी ज़िंदगियाँ नहीं गुजारते हमेशा, और ये इस्लाम का दावा भी नहीं है। इस्लाम कबूल कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इस्लाम की हिदायत पर चल लो, कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हारी ज़िंदगी में, सेहतमंद हो जाओगे, फैमिली में कोई ड्रामा नहीं होगा, पैसे का मामला हल हो जाएगा, सेहत का मामला हल हो जाएगा, सोसाइटी का मामला हल हो जाएगा, हर तरफ से नेमतें आएंगी तुम्हारी तरफ, बस अल्लाह की बात मान लो। अच्छा जी, मैं मानने को तैयार हूँ, क्या मिसालें हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, अरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात मानी, घर से निकाले गए, फिर आग में फेंके गए, फिर बच्चे को ज़िबा करने का हुक्म किया, फिर सहरा में ये अच्छा बड़ा ज़बरदस्त रिलीजन है, इसको आप फॉलो करें, आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम की तरह उनके साथ क्या हुआ था? औलाद छीन ली गई, सालों साल रोते रहे हैं, वो भी अल्लाह के नबी। तो आपकी कोई आप कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ बेच रहे होते हो ना, तो आप बेनिफिट्स देते हो, ये आप ये लें तो आपका ये फ़ायदा होगा। इस्लाम की अगर आप सेल कर रहे हो, किसी को आप कन्विंस करना चाह रहे हो कि भाई आप इस्लाम में आ जाएं, क्यों आऊँ, क्या मिलेगा मुझे इस्लाम में आने से? और आपको ज़िंदगी जो है ऐसी ज़बरदस्त हो जाएगी, आप सुकून आएगा सारी ज़िंदगी में। अच्छा, किताब दिखाओ अपनी, किताब खोल के देखिएगा, जिन लोगों ने इस्लाम को फॉलो किया उनकी ज़िंदगी आसान है, मुश्किल है? मुश्किल, और फिर और मुश्किल, और फिर और मुश्किल, और फिर और मुश्किल। ये कैसी सेल है? और सहाबा के बारे में सोच लो, जिस सहाबी ने इस्लाम कबूल किया है, उसकी ज़िंदगी इस्लाम कबूल करने से पहले उसकी फैमिली है, उसकी अच्छी भली ज़िंदगी है, आराम से ज़िंदगी गुजर रही, दोस्त हैं, अहबाब हैं, सोसाइटी है, जैसे ही वो मुसलमान होता है क्या होता है? उसकी फैमिली उसकी दुश्मन, उसके दोस्त उसको छोड़ गए, बिजनेस वाले उसके साथ बिजनेस नहीं कर रहे, बात उससे कोई नहीं कर रहा, उसे पागल कहा जा रहा है, उसको गालियाँ दी जा रही हैं, उसको सड़कों में मारा जा रहा है, उस पर थूका जा रहा है, सिर्फ एक फैसले की वजह से, इस्लाम कबूल करने की वजह से। यानी ये एक फैसला ज़िंदगी को आसान नहीं बना रहा, लगता है कुरान की रूह से कि जब कोई ये फैसला वाकई दिल से कर लेता है ना, तो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये नतीजा हल्के दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर वाकई ये बात समझ में आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानुर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो सोच समझ के ये फ़ैसला करना पड़ेगा, इय्याका नअबुदु। और क्योंकि ये फ़ैसला बहुत मुश्किल है और इसके साथ बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर जो जहाँ जहाँ से इंसान को सपोर्ट मिलती थी ना दुनिया में, ज़िंदगी में, हो सकता है वो सारे रास्ते बंद हो जाएँ। इसीलिए अब कहीं से सपोर्ट नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से ये फैसला किया है उसी से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो अब समझ में आया कि इसके साथ क्या बात जोड़ी हुई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, ये दोनों चीज़ें आपस में साथ इसीलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये फैसला आसान नहीं है। ये कहना आसान है, ये फैसला आसान नहीं है। अब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम हर नमाज में इसी दावे की तरफ वापस आते हैं जो इस्लाम की बुनियाद है। एक तरह से जो किसी के मुसलमान होने का जो सफ़र है ना, उस सफ़र का ख़ुलासा हम हर फातिहा में हर रकात में पढ़ते हैं। कहाँ से बात शुरू हुई थी, किस नतीजे पर हम पहुँचे, किस लिए हम मुसलमान हुए, इय्याका नअबुदु, और मुसलमान हुए और ये इबादत हमने कबूल की। ये इबादत जब हमने खुद ही अपने तौर पर आकर कबूल की तो फिर हमें इस बात का भी एतराफ़ करना पड़ा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और इसमें बस अल्लाह ताला आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, वो इय्याका नस्ताईन। ठीक है, तो ये बात, अब इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। एक तरफ अल्लाह ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था रब ऐसा लफ्ज़ है जिसमें रिश्ता होता है, तो एक तरफ रब, दूसरी तरफ अब्द, दूसरी तरफ अब्द। अब अब्द के लिए यहाँ पर हमने देखा कि फ़ेल का इस्तेमाल हुआ है। पहले भी फ़ेल और इसम के बारे में बात हुई थी, थोड़ी सी दोहरा लेता हूँ ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। फ़ेल में होता है माजी, हाल और मुस्तकबिल, और इसम में क्या होता है, हमेशगी, दवाम, हमेशा के लिए। अल्लाह ताला ने अपने लिए रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसम, लेकिन हमारे लिए हमने अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया इसम, हमने क्या इस्तेमाल किया, फ़ेल। फ़ेल में क्या होता है, या माजी या हाल या मुस्तकबिल, और फ़ेल ऐसी चीज़ है जब आप कर रहे होते हो तो होती है, जब नहीं कर रहे होते तो नहीं होती। जैसे खा रहा हूँ, खा रहा हूँ का मतलब है जब खा रहा हूँ तो हो रहा है, जब नहीं खा रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये खाता पीता है, अब मैंने इसम इस्तेमाल किया ना, अब वो सो भी रहा है तो खाता पीता है, समझ रहे हैं बात। हमने जब अपने लिए फ़ेल इस्तेमाल किया तो हमने एक बात का हमने इतराफ़ किया यहाँ पर, और वो क्या है कि हमारी इबादत में ऊंच नीच होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल ना होने के बराबर, कभी बहुत ज़्यादा। जैसे फ़ेल में भी ऊंच नीच होती है और फ़ेल में हमेशगी नहीं होती। हमारे लिए हमसे हमेशा की इबादत मुमकिन नहीं है। आप सो रहे हो तो इबादत नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कह दिया हलाल कमा रहे हो तो काम भी कर रहे हो तो इबादत है। अपनी फैमिली के लिए आप ग्रोसरीज करने, दूध और ब्रेड वगैरह लेने जा रहे हो, हलाल रोज़ी से अपनी फैमिली के लिए लेने जा रहे हो, तो वो भी इबादत है। लेकिन उस वक्त आप शौरी तौर पर इबादत नहीं कर रहे, वो तो आप सिर्फ दूध लेने जा रहे थे, ब्रेड लेने जा रहे थे, रोटी ख़रीदने जा रहे थे, राइट। तो यहाँ पर इय्याका नअबुदु में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है कि हमने ये दावा नहीं किया कि हम हमेशा हर लम्हे आपकी इबादत में होते हैं। ये दावा बहुत बड़ा हो जाता, उस पर हम में से कोई पूरा नहीं उतर सकता था। लेकिन हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपकी इबादत कबूल करते हैं और करते हैं, इसमें थोड़ी रूम आ गई, करते भी हैं और कभी कुछ ढीले भी पड़ जाते हैं, फिर करते भी हैं, फिर कभी कोताही भी होती है, फिर करते भी हैं। और इस जो जो वसत है इसके अंदर, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है। तो ये है इय्याका नअबुदु में फ़ेल का इस्तेमाल। ओके, हाँ, अगर तुम इबादत करो कहा जाता, वो ये बात तो मैंने पहले कह दी थी, अगर कहा जाता करो इबादत तो ये हमारा फ़ैसला ना होता, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता। और यहाँ बात हुक्म की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है आपकी अपनी कमिटमेंट की। अब यहाँ हम खालिसतन तेरे बंदे हैं, अगर ये कहा होता, यानी अगर कहा होता नहनु इबादल्लका खासा, हम तेरे बंदे हैं ख़ास, सिर्फ नहनु इबादल्लका खासा, तो ये दावा बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि इसका मतलब है मेरी ज़बान से कभी कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकलता जो आपकी इबादत के साए में ना हो, मेरे कदम कभी किसी तरफ ना चलते जो आपकी इबादत के तहत ना हो, मेरे हाथों से कभी कुछ ना होता, मेरी आंखों से कभी कुछ ना होता जो इबादत का तकाजा ना पूरा कर रहे हो, क्योंकि मैं हर लम्हे क्या हूँ, अब्द हूँ। ये तो मेरे लिए मुमकिन है नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इय्याका नअबुदु, अच्छा अब इय्याका नस्ताईन की तरफ।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan.
0: Islam in baki mazahib se mukhtalif hai. Islam ne pehli cheez madad mangne ko nahi rakha. Islam ne pehli cheez kya rakhi hai? Ibadat. Iyyaka na'budu pehle hai. Aur ye koi chhota fark nahi, ye bahut azim fark hai.
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Al-Tirmidhi Hadith. A man came to the Prophet, peace be upon him, and said, Messenger of Allah, I have committed a serious sin. Can I do any act of penitence? He asked him if he had a mother, and when he replied that he had not, he asked if he had a maternal aunt. On his replying that he said, then do kindness to her.
4: Days of Dhul Hijjah on Inspire FM. Enhance your connection with Allah by engaging yourself in more voluntary prayers, like the Sunnah and Nafl prayers after each Fard Salah. As well as this, attempt to perform the night prayers, like Tahajjud. As Prophet Muhammad said, the best prayers after the obligatory prayers are the night prayers. Make sure to stay tuned to Inspire FM. Assalamu alaikum.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened.